0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: facebook.com/fm247365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Hire ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
3: Mahirana Deghbhal mein Fitrat Parwan charti hai. Shobi Single Remedies, Maksoos Herbal Farms aur Nabatati Baga se hasil ki jati hai. Taki aapko aisa mayar mile, jis par aap mukammal bharosa kar sakein. Dr. Hamid Journal Homeo aur Shobi Germany ke Pakistan mein 75 saal sirf sehatmand Pakistan ke naam.
4: Hire Mini LED TV ke saath 3 mahine ki TapMad subscription bhi with free installation. 144Hz picture quality. Jandar. Banaye har match ko shandar. Powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound. Kare aapko excitement se surround. 3-year warranty aur 6-month free replacement ke saath. Aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye. Hire more creation, more possibilities.
5: Ek duni do do duni char sahi intikhab ke inaamat 2500.
6: Agar aap hain drive car, bike ya rickshaw driver to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le. Platinum status maintain kare aur 5 fair earnings ke saath 2500 se zyada inaamat.
5: Ek duni do do duni char duni do
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
9: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी जैज कैश डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना
8: No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany. Proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
8: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology. Jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
0: And

0: and
1: Hire T3 AC Expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire
0: and
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन एप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
7: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है।
9: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM100
11: 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
12: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Higher Kan Naya, No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
0: And

0: and
1: Hire T3 AC Expert, extreme T3 inverter for extreme heat. Hire
0: and
2: अगर आप है in-drive car, bike या rickshaw driver तो 4 मई से 12 जुलाई तक weekly challenges में हिस्सा ले.
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
6: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
7: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: and
1: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
0: And
2: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
3: Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: and
1: Hire T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Hire.
0: And
2: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट

0: क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखी।
5: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सब रूम मारिया, सब कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 like us on Facebook.com/FM247365 FM 247365।
9: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
12: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
12: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
12: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
13: पर ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूं फरोख हिसार। शहर कराची की सड़कों और शाहराओं पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक मंजिल पंप से कायदाबाद और कायदाबाद से मलीर सिटी की जाने आने वाले ट्रैक पर ऑफिस टाइमिंग की वजह से ट्रैफिक का दबाव इस वक्त ज्यादा है। इसके साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से वो ट्रैफिक जो मौजूदा चौरंगी और वहां से

0: 96.9 AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशिश
4: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
5: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
6: इंट्रोसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है

0: से मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो कॉस्ट, नो वरीज. अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना. नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
1: and
0: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
1: and
3: Tufaan Hai, Har Jeet Ki Pehchaan Hai,
1: and
4: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja,
1: and
5: Aaj Hi. हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
1: एंड
6: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
1: एंड
7: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
1: facebook.com/fm247365
8: FM 247 365.
1: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

जी आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि क्या आप अपनी कदर पहचानते हैं, डू यू नो योर ओन वर्थ। और इस पे आप लोगों के पैगामात हमारे पास आ रहे हैं। और बुरहानुद्दीन कहने से मुझे हॉक्सबे के साथ आएंगे तो पहाड़ों में बसेरा मिलेगा, वो जो बहुत पुरानी एक जगह थी हॉक्सबे में पैराडाइज पॉइंट पे, कि वो जी उसके बीच में सुराख हो गया रॉक्स के बीच में। हाँ हॉक्स पे भी आएंगे, मुझे कराची के अंदर नबत्ता कोई भी जगह इतनी खास जो है ना मतलब घूमने की इतनी अच्छी लगती नहीं है। बचपन में अच्छी लगती थी पिकनिक्स, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कहीं भी जाना। खैर लेकिन थैंक यू जगह, अब जमीन कहीं पर भी हो कराची के अंदर जमीन जमीन है और जमीन की वैल्यू होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कदर की, और हम क्लासिक सॉन्ग के टाइम में आ गए, और हम अभी आपके लिए प्ले करेंगे आबदा परवीन की आवाज में ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को। और आबदा परवीन जो है वो हमारी सिंध की खास, मतलब हम सिंध के लोग बड़े शुक्र गुजार हैं, बड़े फख्र भी है हमें कि हमारे दरमियान आबदा परवीन जैसी आर्टिस्ट थी जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम बनाया। और लेकिन सिंध की जमीन के साथ कल भी ज्यादती की जा रही थी, आज भी सिंध के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। और अभी मेरी किसी से मुलाकात हुई बंदे से, उसने कहा कि मैं विजिट करने पे गया हुआ था थरपाकर डिस्ट्रिक्ट थरपाकर, और वहां पे लोगों की बहुत बुरी हालत थी। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में काम भी हुआ है मगर अभी भी वहां पे ऐसी जगह हैं जहां पे जानवर और इंसान एक ही जगह का पानी इस्तेमाल करते हैं। वहां पे छोटे छोटे गोट हैं जहां पे कम कम लोग रहते हैं। तो उसके बाद उसने बंदे ने कहा कि आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं। कहते हैं वोट हम कहां से दें, 3,000-3,000 रुपए में वोट बिकता है, और क्योंकि कम लोग हैं तो जो वडेरे के लोग हैं उनकी एक एक बंदे पे नजर होती है कि किसने कितने वोट दिए हैं, और अगर गलती से हम किसी को और को वोट दे दें और वो कहें कि वोट कम है तो ये वाले 5 वोट कहां गए, तुम लोगों ने वोट डाले नहीं है किसी और को दिए, तो इस पे भी उनकी नजर है। तो किस लेवल की चीटिंग है वोट्स के अंदर। हमारा वोट जो हमारा एक ही वाहिद हथियार है कि हम जालिम हुक्मरानों से जो है अपनी जान छुड़ा सकें, जब वहां तक में आपने गरीब लोगों तक में भी आपने फोर्स करना है और उनको ब्लैकमेल करना है और कम पैसों में उनके वोट खरीदने हैं, तो कैसे चेंज आएगा। फिर उनको उनका हक भी नहीं देना, चले आपने वोट ले लिया जबरदस्ती, कुछ काम तो करो। तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ऐसे वडेरों को, और जितनी वो लोग ज्यादती कर रहे हैं इस दुनिया में, आप दुनिया बहुत थोड़ी दिनों की जगह है, और अगला आपका इम्तिहान वहां पे अल्लाह ताला जो है ना वो जालिमों को सामने खड़ा करेगा मजलूमों का, कि ये थे ना तुम्हारे गुनाहगार। तो ये होगा एक दिन इंशाल्लाह, हम देखेंगे। खैर इस वक्त कदर के नाम पर हम ये प्ले करें, ये ट्राई ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मतलब इसमें अपनी कदर का बड़ा खूबसूरत जिक्र है। आइए सुनते हैं, आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार रहेगा आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamia इंस्टाग्राम पे।

0: जी आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और अभी आप गाना सुन रहे थे ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम वाकई में, कदर पहचाने अपनी, और क्योंकि अगर आपने अपनी कदर नहीं की तो कोई और भी आपकी कदर नहीं करेगा, तो अपनी कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं मौला जी का कौल है, जिसने अपनी कदर नहीं जानी वो हलाक हो गया। मतलब अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, तो फिर आपसे पैसा कमाने नहीं आए और घटिया लोगों की गुलामी करने भी नहीं आए, कुछ और मकसद था आपका। तो जब तक अगर आपको मकसद ही नहीं पता तो फिर कैसी आपकी जिंदगी क्या है, तो जिंदगी नहीं फिर शर्मिंदगी बन जाती है। तो खैर आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे, आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा हमारे पास रहीम बलोच और नदीम का और आसिफ साहब का भी मैसेज आ गया, जो हम शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
1: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany. This program is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
1: and
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
1: and
5: Tufan Hai.
1: And
6: आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
1: And
7: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
1: And
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
1: facebook.com/fm247365 fm247365 100 fm.
9: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Ye pegham, Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: मेरा आराम AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
6: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज़।

दुनिया के पीछे भागते रहेंगे, दुनिया से शिकवा करते रहेंगे कि उसने आपकी कदर नहीं की, तुमने मुझे बड़ी देर से जाना और मुझे ना पहचाना। लेकिन ये कि कदर आपने खुद ही करनी है और अपनी कदर करवानी भी है दुनिया से। और जिसने आपकी कदर नहीं करनी, आप कुछ भी कर लें, आपके रिश्तेदार आपको नहीं मानेंगे। अमीर हो जाएंगे तो बोलेंगे इसने कुछ चीटिंग ही की होगी, वरना ये और इतना अमीर, तो छोड़ दें ऐसे लोगों को। हमने भी छोड़ दिया है, हम आपके मैसेज पढ़ रहे हैं। अदनान अहमद कह रहे हैं कि लोग हर सूरत में बातें करते हैं, ख्वाह आप अच्छा करें या बुरा। जहां 10 लोग आपको पसंद करेंगे, वहीं 2 लोग नापसंद भी करेंगे। और 4-6 तनकीद भी, यही दुनिया का उसूल है और यही रिवाज है। फैसला हमेशा हमारा अपना होना चाहिए कि हमने करना क्या है, बातों में आना है या नहीं, वक्त जाया करना है या नहीं, खुश रहना है या नहीं। अपनी कदर का फैसला खुद करें, लोगों के तराजू में खुद को ना तोलें। दूसरों की तारीफ से मगरूर और तनकीद से मायूस होना छोड़ दें। हम सब कीमती हैं, बस अपना रेट खुद तय करना होता है। कदर वही पहचानता है जो खुद से सच बोले, मैं हूं, मैं काफी हूं, बस। अदनान अहमद के लिए तालियां तो बनती है ना दोस्तों, इतना अच्छा जो है उन्होंने मैसेज किया। और वसी अहमद सिद्दीकी का भी मैसेज आ गया है हमारे पास, हमारी पुरजोर फरमाइश पे। और वो कह रहे हैं कि लोगों को अपनी कदर बनानी भी चाहिए और पहचाननी भी चाहिए, अपनी काबिलियत और सलाहियत में इजाफा करना चाहिए ताकि आप किसी पर बोझ ना बने और लोगों की बेकदरी का शिकार ना हो। अपनी इज्जत को फोकियत दें और किसी को भी इस बात की इजाजत ना दे कि वो आपकी तजलील करे। क्या बात है, सोच देख रहे हैं। सुनने वालों सुनो कि मेरे कितने खूबसूरत लिसनर्स हैं, मतलब काबिल लिसनर्स हैं हमारे, ऐसी वैसी बात नहीं है हमारे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो की। थैंक यू सो मच। और वाकई में अपने आप से राजी नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने तो पढ़ लिया, अब दुनिया मेरी सारी उम्र कदर करती रहेगी। जो लोग अपनी फील्ड में, भले वो मीडिया है या पॉलिटिक्स है, आगे रहते हैं, वो अपने आप को हर वक्त पुश करते रहते हैं, नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। खैर पाकिस्तान का तो उल्टा निज़ाम है, यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो और तरीके से मेहनत करें, ज्यादा खूबसूरत बने, ज्यादा काबिल बने, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करें और मेहनत करें, तभी आपकी कदर हो सकती है। और मेहनत, जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो मतलब कोई कदर करे या ना करे वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो बिजी होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने में, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में। और अब्बास अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आज समीहा, हमारी कदर हमारी तालीम और हमारा हुस्न अखलाक है, अब दोस्त और लोग समझे हमारे लिए कुछ बताएं, हम अपनी तारीफ क्या करें। नहीं वैसे आप, आई एम श्योर कि अब्बास अंसारी, हमारी की मुलाकात नहीं हुई लेकिन आपके मैसेजेस से यही लगता है कि आप एक इंतहाई सुलझे हुए इंसान होंगे। और जाते जाते हम आबिद अमीर का मैसेज ढूंढ रहे हैं कि वो मतलब किधर गायब है, उनका मैसेज भी गायब हो जाता है अक्सर, छुप जाता है, फिर वो नाराज ही ना हो जाए कि मेरा मैसेज नहीं। वैसे नाराज नहीं होते मुझसे, मुझे पता है। और आबिद अमीर कह रहे हैं, एक दिल की बात कहूं आपसे, इस वक्त की सिचुएशन बिल्कुल मौजू पर है। इस वक्त जिना हॉस्पिटल में है, पिछले 3 दिनों से छोटे बच्चे मोटरसाइकिल लेके निकले और बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा दिया, 2 बच्चों की हालत बहुत खतरनाक है। ओके, और सीरियसली ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, अंडर एज बच्चों को बिल्कुल भी आप बाइक्स ना दें। वो बच्चे हेलमेट भी नहीं पहनते, हेलमेट भी उनके लिए बड़ा होता है, कि बच्चों के लिए इधर हेलमेट भी आसानी से दस्तियाब नहीं है। सो आई होप कि बच्चों को सेहत मिले, अपनी कदर करें, अपनी जान की भी और दूसरों की भी। और इसी के साथ मैं देती हूँ इजाजत, आई एम लीविंग यू विद दिस ट्रैक, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन हु पार्टिसिपेटेड, अल्लाह हाफिज़।

0: बताते नैया खेते, मिन्नत करते रास्ता तकते, कितनी सदियां बीत गई हैं, अब जाकर ये भेद खुला है। जिसको तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जा लागी नाव तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया, वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे।
1: जी आप सुन रहे थे अनीब हजर की ये मैजिकल आवाज। आप सोचें कि आखिर के चंद सेकंड्स में वो आए और मतलब कितनी खूबसूरती से उन्होंने कलाम पढ़ा ये फैज साहब का। और उसमें ये था कि कदर इंसान ने अपनी खुद ही करनी है। अगर आप

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
3: Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji hongi aapse khoob sari baatein, share karengi kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. तो भाई कैसा गुजरा आप सबका छुट्टी का दिन? छुट्टी का दिन नहीं, छुट्टियों का दिन, क्योंकि एक साथ चार जो हैं वो छुट्टियां मिल गई जो कि बहुत सारी थी इकट्ठे. तो कैसा लग रहा है आज मंडे वाले दिन ऑफिस आकर? आज ये कोशिश की कि जी सबसे पहले ऑफिस पहुंचा जाए, या फिर आज भी सुबह उठने में दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन सोचा कि भाई जितनी भी दुश्वारी है, जो भी सूरत हाल रहा है, लेकिन पहुंचना जल्दी से जल्दी है. तो क्या सूरत हाल रही हमें जरूर बताएं. तो यानी कि बहुत सारी बातें आपसे होंगी, आपके हाल हवाल जाने जाएंगे, ये बात तो तय है. तो चलें जी कर लेते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज, जो कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो लेट्स बिगिन.

0: Yes, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज। और अब जबकि बकायदगी से आगाज हो चुका है तो आपको बताते चलते हैं तरीका कार कि कैसे आप ही बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। तो इस तरीके कार के जरिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने हाल हवाल बता सकते हैं, कैसा गुजर रहा है आप सबका दिन ये भी आप हमें बता सकते हैं। एंड आई होप सो कि आप सबका दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा हो, मजे में गुजर रहा हो। आज वी ऑल आर बैक टू द रूटीन, तो वो भी सही है कि अब रूटीन में आना भी बहुत जरूरी है। 4 दिन की छुट्टी मना ली है और छुट्टियां तो वो कहते हैं ना कि जितनी भी हो उतनी कम होती हैं, लेकिन हर इन दी एंड आना तो हम सब में रूटीन में ही होता है और रूटीन में आ चुके हैं सब। तो कैसा लग रहा है आज सुबह सुबह ऑफिस आकर, कर ली है अपने कोलीग से बहुत सारी बातें, या इंतजार हो रहा है कि जल्दी से लंच टाइम हो ताकि दिल खोलकर जी भरकर बातें की जाएं। और भाई इन 4 दिन की छुट्टियों का जो मैं जिक्र कर रही हूं ना, तो भाई इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन 4 दिन की छुट्टियों का अवेल नहीं किया, दे ऑल आर वर्किंग। मतलब कुछ लोग, नॉट ऑल, चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन छुट्टियों वाले दिन भी काम किया। तो वो कहते हैं ना कि जी हर दिन सबके लिए सेम नहीं होता, तो उन लोगों का भी बिल्कुल जिक्र किया जाएगा जिन्हें आज मंडे के दिन उठने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई क्योंकि उन्हें तो कोई छुट्टी ही नहीं मिली और वो अपना काम वैसे ही करते रहे, लोग छुट्टी मनाते रहे और वो काम करते रहे। तो हम सबके दिल का ख्याल रख रहे हैं कि जिन जिनने जैसे गुजारा अपना दिन। खैर जी, जल्दी से आप लोग मैसेज करें, अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, हमें बताएं कि जी इस वक्त आप लोग हमें कहां से सुन रहे हैं, घर में हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते में हैं, आराम कर रहे हैं या काम में मसरूफ हैं। तो इस वक्त आप कहां भी मौजूद हैं, कहीं भी मौजूद हैं, तो हमें जरूर बताएं मैसेज कर। हम आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं और जब तक हम चलते हैं कदर ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड शोबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 75 रिमार्केबल ईयर्स।
2: नशा परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है, ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबता करें।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालिदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: हाय फ्रेंड्स, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। न व्हाट्सएप खुद मांगता है, न कोई अदारा और न कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کرے. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
6: FM 247/365

0: Your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। तो वही मौसम की ताज़ तरीन सूरत हाल से हमने आपको आगाही फराम की, उसी के साथ साथ जरी नूर का भी मैसेज आ चुका है, कहती हैं सलाम कैसी हैं, बहुत सारी दुआ और प्यार आपके लिए, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ, बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए भी। आप बताएं कि आपका छुट्टी का दिन कैसा गुजरा, कामों की नजर हो गया या कुछ आराम भी करने को मिला। अच्छा वैसे कुछ लोग ना वाकई में इतना ज्यादा काम करते हैं कि आप ना मतलब आपका लिटरली दिल चाह रहा होता है कि छुट्टी हो कुछ हो ना ये लोग आराम करें, और इसमें उमूमन तौर पर हमारी ना अम्माएं बहुत ज्यादा काम करती हैं। और आप देखें अगर ऐसे तो आप अगर जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी मिलती है, और उसी के साथ साथ अगर कोई गेजेटेड हॉलीडे आ गया या ऑल दो तो आपको छुट्टी मिल जाती है, और उमूमन तौर पर आप अपनी छुट्टी के दिन काम के साथ साथ आराम भी करते हैं, भरपूर आराम कर रहे होते हैं। लेकिन खवातीन को आराम मिलता ही नहीं है, और जब किसी की छुट्टी हो यानी कि घर में बाकी लोगों की छुट्टी होना तो उन पर काम की जिम्मेदारी जरा और ज्यादा पड़ जाती है। तो यह है कि बेचारी खवातीन कुछ ऐसी हैं कि उनका कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, नाश्ता भी बनाना है, रात का खाना भी बनाना है, फिर शाम में कोई स्नैक्स की तैयारी भी करनी है, एंड ऑल्दो कि उनका जो टाइम है ना वो बड़ा ही कोई बिजी गुजर रहा होता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि छुट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो सुकून से रेस्ट करें, अपनी नींद को पूरा करें, या फिर वो मोबाइल देखना चाहती हैं, वो किसी से मिलना चाहती हैं, जो भी उनके करने की ख्वाहिश है। लेकिन आई मस्ट से कि उनको भी ना रेस्ट वो डिजर्व करती हैं। अच्छा खवातीन का एक ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि अच्छा अगर आप ये कहें ना कि नहीं नहीं तुम्हें कोई काम नहीं करना, आप रेस्ट करें, हम आपकी जगह काम संभाल लेंगे या देख लेंगे, तो वो इसमें मुतमईन भी नहीं होती क्योंकि मेरा किचन मेरी चीजें तुम लोग खराब कर दोगे या वैसे रख दोगे ऐसे रख दोगे। तो एक ये भी बड़ा मसला है कि अगर हम उन्हें आराम देना चाह भी रहे हैं कि वो पीसफुली इंजॉय करें, रिलैक्स करें, तो वो उस हाल में भी ना खुश और मुतमईन नहीं होती, उनको टेंशन ही रहती है कि कौन क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। तो अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, अब फिक्रें भुला दें, टेंशन फ्री होकर काम करने दें, अगर चीजें फैली हैं तो सिमट ही जाएगी, लेकिन वक्त दें, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना जी टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो हकीकत है कि वक्त की बहुत कदर है, और इसका एक एक मिनट जो हम बेवजह जाया कर देते हैं, अक्सर औकात स्क्रॉलिंग करने में, अक्सर औकात बस ऐसी बेवजह बैठने में, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा पीसफुल टाइम की भी जरूरत होती है, आपके घर वालों को भी आपकी बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, वो सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं, छुट्टी वाले दिन भी वो दीगर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, मी टाइम अपने आप को दें, और उसी के साथ साथ अगर वो मी टाइम आपको किसी और के साथ गुजारना अच्छा लगता है तो उसके साथ भी जरूर गुजारें, सिर्फ और सिर्फ काम ना करें, थोड़ा आराम भी करें, क्योंकि आराम भी है बहुत जरूरी और काम भी है बहुत जरूरी। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलें, बैलेंस करके रहें, तो भाई मजा ही आ जाएगा। और इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, क्यों ना एक अदर ट्रैक की जाने भी जाया जाए, आई थिंक दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो चलें जी ट्रैक की जाने भी चलते हैं, और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।
3: It makes me feel like

0: H115 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी। This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
3: And Aji Higher Mini LED TV Line और Stadium का माहौल घर में बनाएं
4: And Higher T3 AC Expert Extreme T3 Inverter for Extreme Heat Higher
5: उम्रा के ख्वाहिश मंद अफराद मुतवज्जे हो मजहब की आव में मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों का शिकार मत बने मुफ्त का उम्रा आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है याद रखें सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत बाखबर रहे होशियार रहे
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
6: Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365 You're in tune with the lunchtime special on the big one FM100
8: This is the lunchtime special, only on FM 100.
9: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
10: Join Fatima Khan.
9: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
10: Midday break a blast.

0: ओके, तो भाई क्विज का सिलसिला भी जारी है आप लोगों के साथ, और साथ ही साथ मजे मजे के ट्रैक्स को भी हम जो है वो शामिल कर रहे हैं। जवाब हमारे पास आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो वहाब हमें मैसेज करते हैं, कहते हैं आंसर डी है। ओके जी, माइसन जर्मनी इन्होंने लिखा भी है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर और नेम हमसे शेयर किया है, वेरी नाइस। इसी के साथ साथ जो है वो जरी नूर भी हमें मैसेज करती है, कहती है मेरा जवाब है पेरिस फ्रांस। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने भी अपना शेयर किया है, दैट्स ग्रेट। तो बिल्कुल जी, आप लोग सोचें सोचें सोचें और इस सवाल का जवाब हमें जरूर दें। क्या पता आपका जवाब ठीक हो और आपको जो है वो डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिल जाए। तो एक्साइटमेंट तो है भाई बड़ी। तो सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं, जब इतनी एक्साइटमेंट है तो भाई हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल हार्नेमन किस शहर और मुल्क में पैदा हुए थे? ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास मौजूद है। ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ऑप्शन बी कार्सुलर जर्मनी, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी माइसन जर्मनी। तो आपकी नजर में सही जवाब क्या है जरूर हमसे शेयर करें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें G3636 में। वहाब और जरी नूर का जवाब हमारे पास आ गया है, जायरा का भी हमारे पास जवाब आ गया है। जायरा कराची से हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं आपकी जवाब डी है। ओके, तो जायरा का भी जवाब हमने नोट कर लिया है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर मैसेजेस। जब तक आप हमें मैसेज कर रहे हैं, हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और आते हैं वापस ट्रैक के साथ।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शॉबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी। This program is brought to you by
2: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले maximum cooling और energy saving, No Frost, No Worries,
1: and Aji Higher Mini LED TV Line, और Stadium का माहौल घर में बनाएं, and
3: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat, Higher।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं, सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

ट्रैक के साथ वापस आ चुके हैं और कुछ ही मिनट हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम आपके साथ गुजारने वाले हैं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल लाए थे और कोई भी पांच खुशनसीब को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। सवाल यह था कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी की शुरूआत जर्मनी से हुई है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल हार्नेमन किस शहर और मुल्क में पैदा हुए थे? फ्रैंकफर्ट जर्मनी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैर्सुला जर्मनी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी माइसन जर्मनी। आपकी नजर में सही जवाब क्या है आप हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, के एच आई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। अली भी हमें मैसेज करते हैं। अली कहते हैं कि आपकी आंसर जो है वो बी है। ठीक है जी अली, आपका भी जवाब हमने नोट कर लिया है। इसी के साथ साथ हमें अरीब भी मैसेज करते हैं। अरीब ने हमें बताया है कि ऑप्शन डी है जवाब। ठीक है जी, नोटेड। और उसी के साथ साथ हमारे पास उरूज का भी मैसेज आया है। उरूज कहती है आपकी फ्रांस, ओके फ्रांस और पेरिस है। ठीक है जी, इन्होंने आगे पीछे कर दिया लेकिन कोई मसला नहीं है, जवाब हमने आपका नोट कर दिया। एंड द गुड थिंग इज दैट के कॉन्टेक्ट नंबर भी लोग अपना शेयर कर रहे हैं, दैट इज रियली रियली नाइस। तो जी ताज़ तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो खबर आपको सुनानी है वो ये है कि जी प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का वक्त हुआ जाता है खत्म और आप सभी के जवाबात हमने नोट कर लिए हैं। तो कोई भी पांच खुश नसीब के घर कॉल आ जाएगी जिनके जवाबात होंगे ठीक। तो आप लोग इस क्विज को एंजॉय कर रहे थे जो कि डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आपके साथ खेला जा रहा था। तो प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
3: And Aji, Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
4: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर
0: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
5: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
6: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
7: घर के अफराद और आमदनी में तवाज़ुन
8: हमारी जिम्मेदारी है.
9: खानदानी मंसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
10: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान
11: इट्स 24 आवर्स नॉनस्टॉप वाइब्रेशन कनेक्टिंग यू
12: कनेक्टिंग
11: होल्डिंग यू
12: होल्डिंग
11: विद FM 100
13: FM 100 FM 100

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: And Aji, Higher Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
4: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving, no frost, no worries.
3: And RG, Higher Mini LED TV line, aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
4: And Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

हजार रुपए बोल बोल से ही सुख घटते दर्द हजार मिनट कभी टकरी तोल से ही तेरी हस्ती अकवी बुझ जावे कभी सानू अंदरों

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM 247365.

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
1: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Your location for maximum music.
1: It's 5 PM. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी. This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye,
4: and Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja.
5: And Agar Aap Hain Drive Car, Bike Ya Rickshaw Driver, Toh 4 Mai Se 12 Julai Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le.
6: Always remember, parents are Pakistan's first line of defense. You are decisive for a drug-free society.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 Inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर.
2: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Aaj Hi, Fire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye,
5: and Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
6: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
7: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रास्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
8: हमने अपना आप उसे 3 बार मौत देखे.
9: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
10: फिर उन्होंने वीडियो बनाया, सानू मारिया, सब टूटिया.
7: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
11: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा.
7: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकद्दसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने. हुकूमत पाकिस्तान.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही फायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। फायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
1: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
2: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लेटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से जायद इनामात।
3: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी JazzCash डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए JazzCash है ना।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: This program is brought to you by
9: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
10: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
10: And तूफान है, हर जीत की पहचान है ये।
0: And
11: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire।
12: बैन अल-अक्वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
14: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
15: हमारी जिम्मेदारी है।
16: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
17: Like us on facebook.com/fm247365
18: fm247365 fm100
7: 31 saal fm100 aapki awaaz। Assalamu alaikum pakistan,
18: Assalamu alaikum pakistan, Pakistan।
19: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
20: Uninterrupted.
19: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
20: You're listening FM.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye,
0: and
5: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: एंड
6: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
7: तूफान है हर जीत की पहचान है।
0: एंड
8: हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
9: Like us on facebook.com/fm247365.
10: A bigger variety of broader music mix on the biggest hit.
11: Biggest hit.
10: Only on your favorite radio. FM 100. FM.

0: बड़ा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
9: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
10: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
11: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
4: And अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: And
12: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: And
1: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
9: Like us on facebook.com/FM247365.
13: FM247365. Evening drive time with DJ Kasam.

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And aaj hi hire mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: तूफान है हर जीत की पहचान है
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
7: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला

0: कर सकता। हायर का नया रियल टी थ्री इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर टी थ्री एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम टी थ्री इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
1: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
2: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी JazzCash डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए JazzCash है ना।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो एंड शोबे जर्मनी, प्राउडली सर्विंग पाकिस्तान विद द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी फॉर 75 रिमार्केबल ईयर्स।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: तूफान है
0: and hire T3 AC expert extreme T3 inverter for extreme heat hire।
8: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
10: Let's celebrate
9: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 6:08 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan Hai
0: and
3: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Hire.
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: This transmission is brought to you by
5: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: This program is brought to you by
6: Hire Kannaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM247365.
9: FM 100.
10: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
11: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
2: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
3: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं, मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
1: This transmission is brought to you by
2: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी. This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए.
4: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में एक खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखिए, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: Like us on facebook.com/fm247365.
7: FM247365. It's not just the music, it's the way we bring it on. Music on Wheels with TJ Kosala.
8: Yo, baby, I'm back on the dial. Lady in Red, originally sung by Christy Burke.

जी वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ। जनाब आगाज करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक से, मैसेज बिल्कुल पहुंच गए हैं, शामिल करूंगा मैं लेकिन इस खूबसूरत ट्रैक से, ट्रैक के बाद। और ट्रैक भाई बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो वाकई मुझे लगता है मैंने अभी भी नहीं सुने। पाकिस्तानी फिल्मी गाने काफी सारे और बाज इतने अच्छे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि वो हिट क्यों नहीं। तो कुछ गाने ऐसे भी रखे हैं आज की क्यू शीट में, लेकिन आप लोगों ने तो सुने होंगे। अच्छा जी, तो आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से।

शुभ जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और जनाब सबसे पहले मैसेज कर दिया किसी, सलाम सब सुनने वालों को, वेलकम। नाम नहीं लिखा अपना, चले बहरहाल कोई बात नहीं। बिलावल गिजरी से अयाज भाई आपको और एफएम 100 के तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है और दिन कैसा है गुजरा मेरे भाई का? अच्छा, और रावल, रावल भाई आज आपका शो सुन रहे हैं। चले जनाब, जो जो शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया आप सबका, टाइम निकाला आप लोगों ने अपने फारिग वक्त में, मतलब मसरूफ वक्त में से, और आपने सुकून से प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ आपोश, तमाम सुनने वालों को सलाम, एफएम की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची उरूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर। मैडम मुल्क और कौम से खिताब कर रहा है यूसुफ, क्या हो गया? अच्छा जी सर, एक शादी का सॉन्ग ठीक हो गया, और एम यूसुफ जई, महा यूसुफ जई मेरे ख्याल से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और इतने प्यार से मैसेज करने का शुक्रिया भाई। उम्मीद रुबाब आ गई है भाई, अयाज जी प्लीज एक सॉन्ग संजू को सुना दें, गाना भी लिख दे। देखो उम्मीद रुबाब, मत किया करो इतनी मेहनत, बस तुम ये कहा करो गाना डेडिकेट कर दे, मैं खुद ही डेडिकेट कर दूंगा। अच्छा प्लीज अयाज, माशाल्लाह शो बहुत ही अच्छा लगता है, मालूम सानू मालूम सबनू मालूम, लेकिन बहरहाल आप लोगों का प्यार बहुत शुक्रिया। महनूर नेवल, नेवल कॉलोनी मेरे ख्याल से, नेवल से अयाज भाई, अयूब आफरीदी भाई को और मुश को सलाम, बाकी लोगों को कान बंद कर लें, क्या करें, मानू सबको सलाम देते हैं। समझ आ गई कि नहीं आई? नायला भी आ गई, प्रिंस अयाज आपको सलाम, बिलावल और तमाम लिसनर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। प्रिंस अयाज, हाय प्रिंस, कहा सुन के मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो वाले ये सूट पहना हुआ मैंने, पुरानी फिल्में देखे ना, चमकीले चमकीले, वो हाथ में स्टिक भी होती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नायला जी बहुत शुक्रिया आपका, आपका प्यार आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। संजीदा जी क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं, गाना पहला ही इनको पसंद आ गया है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, आए क्या कहने इस गाने के पीछे।

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
2: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Active.
6: Yummy.
5: Adorable. Zabardast.
6: Babe, I've got a crush on you. Ye pyaar to suno yaar.

जनाब सुन रहे एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस किए 40 पीस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। उम्मीद रुबाब कह रही पहला मैसेज मेरा था, नाम भूल गई। बेटा बादाम खाया करो, हम बार बार आपको बोलते हैं मत भूला करो, लेकिन आपने भी कसम खाई हुई है कि पहला मैसेज मैंने नाम भूलने वाला और दूसरा फिर ये वो मैं थी नाम जो भूल गई। क्यों ऐसे, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, क्या है आप में? अच्छा जी बिलावल का मैसेज आ गया है, सुंबल जी और कादिर भाई को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब मुश्क हमें जो है मुश्क लैला वो भी सुन रही है, अस्सलाम वालेकुम किंग क्या हाल है? ना शो कहाँ का किंग भाई, कहाँ का किंग? आज के शो की दीवानी संजू का फेवरेट है कोई खुशी का सॉन्ग के लिए मेरी जानिब से, ये लिख दिया मैंने, एज इट इज ही पढ़ दिया। मेरे ख्याल से कहनी भाई कोई गाना डेडिकेट कर दें संजू को मेरी तरफ से, ठीक है। कल का शो सुपरहिट था, फोन ठीक हो गया, फोन जनाब कुछ गड़बड़ है अभी, फिलहाल इसी से गुजारा करना है आपने। और हुमा सिद्दीकी बड़े दिनों बाद हमें मैसेज करी, हुमा कहाँ गायब हो गई आप? वालेकुम अस्सलाम, तबीयत तबीयत सही है, क्या सूरत हाल है, सब सेट है? अच्छा जनाब रिहान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गयासुद्दीन बलवन आ गए भाई, सबको सलाम मुल्तान से। सुना कि मुल्तान में आज शदीद गर्मी थी, गयास भाई जरा रिपोर्ट दें, टिका की गर्मी थी आज। अच्छा जी उमेर रुबाब कह रही है आप मुझे बेटा मत कहें ना, बेटा वो वाला है, बेटा छोड़ूंगा नहीं, ये वो वाला उस तरह वाला प्यार से नहीं बोलता। चलें जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने पर, वो है कैसे?

हुआ जनाब, सुन रहे हैं 100 अयाज अहमद के साथ और साथ साथ मैसेजेस भी के चार्ज पे टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। बिलावल भाई जो है ना, जरा कह रहे हैं कि भाई हमें अपडेट जो है ना फुटबॉल की भी देते रहे। मैच खेला जा रहा है जनाब, सर बिल्कुल मैं देता हूँ आप अपडेट देता हूँ, जरा तसल्ली रखें आप। वैसे अपडेट तो आपको देनी चाहिए, घर में बैठे हुए आराम से। अच्छा वो 10 बजे अभी शुरू होगा, अभी तो टाइम है जरा, जैसे ही शुरू होता है और जो उसकी अपडेट आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे अयाज भाई, कैसे हैं आप? सब सुनने वालों को मेरा सलाम और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। रीमा जी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलाम, कैसे हैं आप? हरी नूर मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत? ठीक, मजे में सब। अच्छा जनाब ब्यूटीफुल ये सॉन्ग, जानी मैं क्या करूँ आपको, जानी कहते हैं आपसे एहतराम प्यार जो करते हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब हुमा आ गई, मैं हुमा जी। ओहो, ट्रेजेडी भाई, भांजी की इनकी डेथ हो गई भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अच्छा जनाब इसके अलावा ठीक हो गया, ठीक हो गया हुमा जी, बस ये जिंदगी का हिस्सा है, परेशानियां चलती रहती हैं, बस इनको फेस करना है। बाकी दुनिया में आना और जाना ये तो हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ। जनाब कोई कह रहा था शादी के गाने भैया, लो जी फिर शादी का खूबसूरत सा ट्रैक, और वो है कैसे

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany. This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें. जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम दीजिए.
7: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
8: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: Active, yummy, adorable, zabardast. Say I've got a crush on you. Ready to be asked to suno yaad.

हुआ जी, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। न्याज बहादुर का मैसेज आ गया है, अयाज भाई हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत खूबसूरत, मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को सलाम, हो सके तो जुबैदा खान का कोई अच्छा सा, अच्छा मैं क्यू शीट में देखता हूँ, यकीनन जुबैदा खान वैसे होती तो है हमारी क्यू शीट में, मैं चेक करता हूँ। नाइस सॉन्ग, मेरी भाई भांजी की शादी नेक्स्ट वीक, जरीनूर एक और शादी का गाना भी हमारे पास, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी आप। नौरीन तौसीफ फैसलाबाद से आ गई हैं। नौरीन कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, और दुआएं सलाम सबको सलाम दे दिया उन्होंने। तुझे अपने दिल से कैसे भुला दूं, अहमद रुश्दी का सॉन्ग अस्मा बहना को डेडिकेट कीजिएगा। अरे अस्मा बहना तो सुना है कि आज आखिरी शो किया उन्होंने 101 पर, और अब किसी और अच्छे से स्टेशन चली गई है। चले जनाब, बेस्ट ऑफ लक, अस्मा जी जहां जाएं खुश रहें, अच्छे से काम करें, और आप तो हैं ही। अच्छा जनाब, इसके अलावा वाह वाह आयाज भाई क्या सॉन्ग लगाया है आपने, आपकी तो बात ही अलग है। रीमा जी बड़ी मेहरबानी, ये मैसेज आपका मैंने पढ़ दिया। नायला कह रही है प्रिंस अयाज बिलावल बहुत प्राउडी है। वालेकुम सलाम का जवाब भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, बेचारा बिजी होगा या उसने सुना नहीं होगा, ऐसा क्यों आपने सोचा यार, कभी कभी बंदा बिजी भी होता है। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं वाकई में गर्मी बहुत है मुल्तान में, लेकिन फिर मौसम अचानक ठीक भी हो जाता है। ये बात सही की आपने, बेहतरीन बात की आपने। चले जनाब, शादी की बात हो रही है, एक और शादी का गाना मैं आपको सुनाता हूँ, और बात फिर अहमद रुश्दी की हो रही है। कौन याद आता है मुझे, फुप्पा याद आ रहे थे। फुप्पा जी कितने हो तुसी, ठीक है ना, मजे में है। फोन कॉल क्या बंद हो गई, फुप्पा की आवाज कोई तरस गए हम, और फुप्पा ने एक दफा मोबाइल पे कॉल की मुझे और फुप्पा की आवाज चेंज। फुप्पा जी गाना आपके लिए खास तौर पे, हालांकि सहरे वहरे आपके सेट हो गए हैं, जमाना हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेडिकेट कर देता हूँ।

जना वेलकम बैक FM 100 और आयशा जी बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. कैसी आप? कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं. एक हफ्ता आप नहीं आए, मैं बहुत बोर हूं. चलो कोई बात नहीं यार, ये भी तो देखें दिन थे ऐसे ना कि इसमें आना बनता भी नहीं था. कादर बख्श बलोच कह रहे हैं आज भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम. कैसे आप? बिलावल भाई और संजू जी को सॉन्ग डेडिकेट कर दें. कादिर भाई बिल्कुल ऐसे ही, मैं थोड़ी देर में सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ. और हुमा सिद्दीकी आ गई हैं फिर से और कह रही पुराने सॉन्ग्स में कितनी मोहब्बत नजर आती है, सिंसेरिटी जैसे पुराने आर्जित जी. बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. वैसे वाकई में बात ऐसे ही है कि पुराने जो गाने हैं लिरिक्स यानी इसकी जो शायरी होती थी वो भी बड़ी कमाल, और म्यूजिक की तो हम तारीफ करते ही रहते हैं. बस अगला गाना हुमा जी आपको मैं डेडिकेट करता हूँ. फरहान साहब कह रहे हैं सर ये हुकूमत अवाम पे कब तरस खाएगी? बेटा जी जब अवाम खुद अपने आप पे तरस खाएगी तब. पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, कम कर सकते हैं लेकिन नहीं. अच्छा इनको ना उनकी फिक्र है बहुत कि यार उनको नुकसान हो जाएगा जो कंपनियां हैं पेट्रोल की. ये अवाम को नुकसान हो रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है. मैं क्या करूं यार, बस भैया पैसे आ रहे होंगे इसीलिए उनको फिक्र नहीं है. गरीब आदमी बेचारे जो है वो दिए जा रहे हैं. और हकीकत यह है कि अगर पेट्रोल कम हो जाए तो काफी महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है. और दूसरी बात ये एक और बताऊं मैं आपको, पेट्रोल थोड़ा बहुत कम हो गया है लेकिन जो किराए हैं, जो वो पैसे हैं खाने पीने की चीजों पे, वो अभी तक वैसे के वैसे ही उसी दौर में. पेट्रोल जब कल परसों महंगा हो जाएगा और पैसे बढ़ा देंगे खाने पीने की चीजों पे कि भाई वो पेट्रोल महंगा आप देखें. अब जब सस्ता हुआ तो भाई तुसी भी सस्ता करो ना. डबल रोटी की मिसाल आपके सामने, आटे की मिसाल आपके सामने. अच्छा काफी सारे दोस्त मुझे मिलते हैं ना जब अयाज भाई आपको मैं रेडियो पे सुनता हूँ ये वो, तो वो आके अपने अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं. अयाज भाई आप बोला करें. मैंने कहा बेटा अगर मैं तुम्हारे सारे किस्से सुनाना शुरू कर दूं ना अजीब ही माहौल हो जाएगा भाई. लोग जो होंगे बोलेंगे यार ये कितना दुखी चल रहा है. लेकिन बहरहाल दुख तो है. मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, जब मैं सीट पे बैठता हूँ तो बात आवाम की करता हूँ.

यहाँ मैं सिर्फ ऑन एयर कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, मसले का हल तो फिर अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जनाब, टाइम चेक और एक मिनट की ब्रेक, मिलते हैं एक मिनट के बाद।

जनाब वेलकम बैक। और फूफा जी ने मुझे बता दिया कि वो सुन रहे हैं। फूफा कैसे मिजाज है, कैसी तबीयत है? इसी बात पर फूफा के लिए एक और अहमद रुश्दी का गाना मैं थोड़ी देर में प्ले करूंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताते जाएं भाई। अस्मा हुसैन हमें सुन रही है। अस्मा क्या हाल है आपके? ठीक हैं? और कह रही मैं सुन रही हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। कौन से स्टेशन जा रही है, क्या कब है टाइम, क्या है जरा हमें भी बताएं, हम भी सुने ताकि उस टाइम पे। अच्छा भाई, नेक्स्ट ट्रैक। और हुमा बड़े दिनों बाद आई हैं, और हुमा को हम डेडिकेट कर देते हैं, और वो है कैसे।

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: जनाब वेलकम बैक। और बिलावल भाई ने एकदम डर के मारे नायला को कहा कि वालेकुम सलाम, और इसके अलावा अस्मा जी को भी सलाम एंड वेलकम। गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं कि भाई अच्छा स्टेशन मिल गया, कैंटी स्टेशन, क्या बात है, सारी नॉलेज है इनको, सब पता है इनको। ठीक हो गया जनाब, बस मैंने तो पहले दुआ कर दी है अस्मा जी आपके लिए, जहां जाए खुश रहें और बेहतरीन सा शो करें आप। अच्छा जनाब, अब जरा खूबसूरत सा ट्रैक और शामिल करते हैं। मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं, KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। और मलिया जी हमें मैसेज करिए, मलिया क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। और कह रही है कि शो कम कम सुनती हूँ लेकिन जब भी सुनती हूँ महजूज, मेरे ख्याल से लिखना महजूज होती। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया बहुत भाई। खुश रहे, सलामत रहे और नाम सिर्फ एम लिखा हुआ है। कौन हो भाई, कौन? अच्छा जी बिलावल सर, सॉन्ग स्लो लेकिन अच्छे हैं। बिलावल भाई बड़ी मेहरबानी, बस अच्छे होने चाहिए, पसंद आने चाहिए। और शुक्रिया अदा कर दिया है आसमा जी ने। आसमा जी शुक्रिया बिल्कुल अदा ना करें, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जनाब थैंक्स टॉम क्रूज, हाय इतने टॉम क्रूज मेरे बड़े फेवरेट हैं यार, ऐसे एक बात है। बहुत शुक्रिया उमा जी, यानी इतना खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट किया आपने। और कहीं मत जाना एफएम 100 छोड़ के, मैं क्यों जाऊंगा यार एफएम 100 से। मैं वैसे बताऊं, प्यार मोहब्बत है वैसे ही। आगे वक्त के हालात का कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक तो हमने प्यार मोहब्बत जो है ना एफएम 100 से निभाया। अच्छा जनाब गर्मी की कुछ थोड़ी सी बात करें जो यूरोप में हो रही है, टिका के कह रहे हैं कि 21 जून से ना कुछ 1300 से ज्यादा लोगों की ना अमवात हो गई, डेथ जो हो गए रेशो काफी है। और मजे की बात ये, वहाँ पे लोगों ने जो अपने घरों में ना एसी का सिस्टम है यहाँ वहाँ पे, और ना पंखे भी नहीं, और इस दफा को अनिवार्य गर्मी पड़ी है। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि यार अब यहाँ जो सर्दी पड़ती है ना 40-41 टेम्परेचर जो पड़ता है, पाकिस्तान में भी पड़ता है, लेकिन वो फील इतना नहीं हो रहा होता तो पोल्यूशन और वो गंदगी की वजह से ना, कहीं ना कोई देखो हर चीज में कोई पॉजिटिव चीज भी निकल आती है, तो ये एक चीज हो गई है डायरेक्ट जो है ना गंदे एटमॉस्फेयर की वजह से वो डायरेक्ट शवाएं जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही। वहां पे माहौल बिल्कुल साफ सुथरा, सूरज की रोशनी टिका के टाइट आपकी बॉडी के ऊपर और बॉडी जमीन के अंदर, इतनी गर्मी तौबा। अच्छा जनाब सड़कों की जो जर्मनी में सूरत हाल हुई है वो तो कह रहे हैं भाई वो मेल्ट हो गई पूरी, यानी पिघल गई ट्राम की पटरियां और जो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी मेल्ट हो गए भाई। देखिए लोहे के थे या प्लास्टिक के, प्लास्टिक के होंगे मेरा ख्याल। अच्छा जनाब और जो मरने वालों लोगों की जो तादाद बता रहे हैं वो 65 अबव भाई। अगर किसी का प्लान है यूरोप जाने का तो पाजी मैं कह थोड़ा जरा रुक जाओ, एक दो महीने बाद जरा प्लान करें आप, वरना लोग तो बैठे हुए हैं भाई फुल टाइम।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज़ कैश है ना.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
3: क्या कम उम्र बच्चियों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र उनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की? उन पर काम का बोझ ना डाले, उनसे उनका बचपन ना छीने. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है. बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिले सजा जुर्म है. आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. Active, yummy, adorable,
6: zabardast. Ye pyaar to suno yaar.

है जनाब, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी 3636 पर पहुंच रहे हैं। रिहान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का। और बातों को भी पसंद कर रहे हैं भाई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, और अस्मा जी कह रही हैं कि मुझे बुलाकर और खुद गायब होगी हैं संजू जी। संजू जी बिजी होंगी, कोई मेहमान आ जाते किसी टाइम पे भी उनके, तो इनको बिजी रहने दें, काम वाम करने दें। आप सुनिए, यही बहुत है हमारे लिए। और जब वो सुनती है तो जरूर मैसेज कर देती है। अच्छा जनाब, बारिश वैसे तो नहीं हो रही कराची में, लेकिन इर्द गिर्द हो रही है, सिंध में हो रही बारिश है। हमारे लिए भी दुआ करें, कराची में भी कोई अच्छे काम करो ताकि यहाँ पे भी बारिश हो जाए। बहरा जनाब, बारिश जब आती तो इस तरह के गाने में लगा लेता हूँ, लेकिन आज वैसे ही दिल कर रहा है लगाने का ट्रैक को। मौसम तो बहरा क्लाउडी सा है, इंजॉय करें। मैसेजेस करें 3636 पर।

फरमाए जनाब, वेलकम बैक सुन रहे एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस प्यार से मोहब्बतों से पहुंच रहे हैं टिका के। फरहीन शहजादी भी आ गई। शहजादी जी कैसी हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हाल चाल कैसे? हाल भी ठीक, चाल भी ठीक। और जनाब तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और किस टॉपिक पे बातचीत हो रही है? किसी भी टॉपिक पे नहीं, बस बातें किए जा रहे हैं, टॉपिक ढूंढ रहे हैं कौन सा होगा, और टॉपिक हम ढूंढते नहीं। अच्छा जी, नायला कह रही है प्रिंस अयाज बता रहे हैं कि इस साल मॉनसून की बारिशें कराची में मामूल से कम होंगी। आय हाय, होनी चाहिए थी अच्छी तरह, मजा आता, लोग नहा लेते इस बहाने। और जनाब बात हम करेंगे फुप्पा की। फुप्पा जी ने कॉल कर दी और कहा ये जो पीछे गाना चल रहा था तेरे भीगे बदन की खुशबू से, शराफत का गाना, अच्छा फिल्म का नाम शराफत, और गाना देखो यार, ये मस्ती वाला फुल टाइम जिसमें कहीं शराफत नहीं लग रही। लेकिन फुप्पा इतने प्यार इतनी मोहब्बत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और फुप्पा की जब इतनी मोहब्बत और प्यार आ जाता है तो हमें भी थोड़ा सा प्यार आता है। उनके फेवरेट जो सिंगर हैं उनका गाना उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं। अहमद ऋषि साहब का खूबसूरत से ये ट्रैक, पुप्पा आपके लिए।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
2: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Active,
6: yummy,
5: adorable, zabardast. Say I've got a
7: crush on you. Ready hai pyaas to suno yaar.
8: Ready hai pyaas to suno yaar.
9: Say I've got a crush on you.
10: जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं और कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं. रानी जी आ गई है. रानी क्या हाल है आपके? रानी जी प्लीज, अभी मैं शो कर रहा हूँ ना, तो प्लीज कॉल वॉल ना करें मेरे फोन पे. खुद भी समझना है आपने, ऐसा नहीं है कि कॉल पे कॉल करें आप. और मैसेंजर पर जनाब कॉल भी शुरू हो गई है. देखिए जब बंदा ऑन एयर बैठा हो तो इस चीज का खुद ख्याल रखना होता है. बहरा रानी जी को वेलकम कहेंगे हम FM 100 पर. और मैच की सूरत हाल बिलावल कह रहे हैं, जरा बताएं आप. तो भाई अजीबो गरीब माहौल बन गया है, यानी कि एक गोल कर दिया है जापान ने. बताइए, ब्राजील पे उम्मीदें रखी हुई हमने, लेकिन गोल जो है वो जापान ने कर दिया. भाई ये होती है बात. वैसे मेरी फेवरेट जो टीम है वो है ब्राजील. दुआएं मेरी ब्राजील के साथ हैं. और लियारी में भी जो है ना, सारा ऐसा लगता है कि ब्राजील ही को सपोर्ट कर रहे होते हैं. और मोहनलाल इतना तवील मैसेज, पूरा चैप्टर लिख दिया भाई आपने तो. उमर कोट से मैसेज करने का शुक्रिया. और तसल्ली से कोई इन्होंने टॉपिक जो है ना डिस्कस किया, उस पर बात करेंगे. अच्छा भाई, गुफरान साहब तशरीफ ला चुके हैं. गुफरान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, फरीन शहजादी जो है वो भी आ गई. कह रही भाई मैं एनर्जी लेने के लिए ना यहाँ आ गई हूँ. अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. आए जी, हुमा जी कह रही है कितना हार्ट टचिंग सॉन्ग आपने लगा दिया. बड़ी मेहरबानी. गाने अगर आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. थोड़ा सा एनर्जेटिक गाना लगाता हूँ, ऐसा ना हो कि दुखी हो जाए फुल टाइम. गुफरान भाई की जो है ड्यूटी अभी स्टार्ट हो गई. गुफरान भाई तबीयत कैसी है? सही है? आवाज मेरी सही आ रही है आपको? ठीक हो गया. प्यारे से हमारे इंजीनियर गुफरान भाई आ गए. अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं. और वो है कैसे,

हाय जना, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं आपके 3636 पर। और जनाब यूके से नादिया मलिक आ गई है। नादिया मैं क्या, कितने हो तुसी? जमाना हो गया भैया, लेकिन बिजी रहती हैं। और क्या मसरूफियत हो रही है इस टाइम पे? और यकीनन यूके में इस वक्त शाम का टाइम होगा। गर्मी की क्या सूरत हाल है यूके की, बताइए मुझे। अच्छा जनाब, और संजीदा जी वापस आ गई हैं और गाना पसंद कर लिया उन्होंने। सुरीली की उठ सुनी है नहीं तुमने? ऐसी बता रही हो सुरीली की उठ। आपकी दोस्त आ रही, परेशान हो गई, मेरी मुझे बुला के खुद गायब हो गई, तो ये वाली चीज भी है ना। अच्छा जनाब, और रानी, अब मुझे पता था रानी हुसैन हो ही नहीं सकती, यानी उनकी साहबजादी थी मेरे ख्याल से जो फोन कर रही थी, तो चलो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है रानी जी, बस बहुत शुक्रिया। जब ऑन एयर होते तो जरा फिर ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का। अच्छा जी, मेरा भी बड़ा दिल करता है कॉल पर आपसे बात करने का, लेकिन प्रोग्राम की टाइम आपको। अरे कितनी अच्छी है आप, फरीन शहजादी कितनी अच्छी हो। क्या चिचोरो सॉन्ग बोले तो चीप मालूम। अरे कोई बात नहीं, मिक्स हमारी की शूट होती है, अभी तो इससे चीप है, ये तो कुछ भी चीप नहीं है। मैं हाँ हुसन दी कलाशन कोफ, अभी आपने हुमा जी वो नहीं सुना। चीपनेस की इंतहा। इसके अलावा नसीबो लाल के भी काफी ऐसे गाने जो अगर आप सुने तो बंदा छत से छलांग लगा ले। बेटा जी मैं क्या सुन रहा हूँ। नायला कह रही है प्रिंस अयाज बिलावल क्रिकेट लवर हैं या फुटबॉल? वैसे वो स्पोर्ट लवर है, मुझे लगता है स्पोर्ट्स जो है ना, मैं भी ऐसे ही हूँ, स्पोर्ट्स से हमारा जो है ना बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा जनाब, एक गोल अभी तक जापान ने किया हुआ है और ब्राजील की टीम अभी इस वक्त जो है वो हार रही है। मजे का मैच मुझे लग रहा है होने वाला है। अच्छा जनाब, एक गजल शामिल कर हुमा जी, फिर आपको मैं डेडिकेट करता हूँ, बड़ा बड़ी डिसेंट और बहुत ही फेवरेट। और मेहंदी हसन साहब अचानक मुझे याद आ गए, पता नहीं क्यों।

हाय जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 110.47, टाइम हो गया है। अच्छा जनाब, और कमर अली फ्रॉम टंडो आदम से, टंडो आदम की सजी याद आ गई मुझे। अयाज भाई, शो इज बेस्ट, सलाम टू संजू जी। चले जनाब, कमर अली की जानिब से संजू जी को सलाम आ गया, वालेकुम सलाम उनकी जानिब से। और बिलावल कह रहे हैं कि सर, टीम ब्राजील को हराना इतना आसान भी नहीं होगा। हाँ वैसे ये बात तो सही की, इसीलिए कह रहा था मैं कि मैच मजे का होना चाहिए। अच्छा जी, हाय संजीदा चाची, पुप्पो को सलाम, और पुप्पा, अच्छा पुप्पा को सलाम, इमरान और उरूसा को, क्या हाल है रानी जी? सारे ठीक ठाक हैं, और आप बताइए, आप कैसे? चाची याद आ गई, बड़े दिन हो गए चाची से की आवाज सुने हुए भी, तो यकीन अल्लाह ताला उनको खुश रखे, जहां रहें खुश रहें। संजीदा कह रही मुझे कोई गाना डेडिकेट नहीं किया, मैं ये नेक्स्ट गाना संजीदा जी आपको डेडिकेट करने वाला हूं। और हुमा सिद्दीकी कह रही हैं कि वाह वाह, ये होते हैं सॉन्ग, क्लासिक रॉक सॉन्ग। वैसे आपको एक बात बोलूं, आपसे बात करना अच्छा लगता है। अरे एक सो सके, हमें भी बहुत अच्छा लगता है भाई आपसे बात करना। और फरीन कह रही है इस तरह के सॉन्ग सुनाकर फुल रुलाने का। अरे नहीं भैया, क्या अब देखो, सबको खुश मैं नहीं कर सकता एक टाइम पे। किसी को उस तरह के गाने पसंद है, किसी को जरा हल्ला गुल्ला वाले, तो मिक्स होती है भाई, मिक्स चार्ट। अच्छा जी, अभी बारिश हुई है, पक्की बात है आपके इलाके में बारिश होगी? ऊपर कहीं छत तो नहीं, कहीं टैंकी का पानी आ रहा? चेक कर लो जरा। तो संजीदा जी को ये खूबसूरत सा ट्रैक जो है वो हम डेडिकेट कर देते हैं, और वो है काइस से।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जनाब और टाइम जो है वो कह रहा है जल्दी जल्दी जो है ना आपने वैसे बहुत सारे सॉन्ग थे जो आज भी प्ले होने से रह गए तो थोड़े से सुना दूंगा मैं आपको जल्दी जल्दी। बिलावल भाई भी कह रहे हैं भाई जबरदस्त शो गुड नाइट भी कह दिया है चलो जनाब। और यूके से नादिया मलिक जी मौसम के हवाले से कह रही है भाई खुश रहा करें क्योंकि पाकिस्तान का मौसम जबरदस्त है और यूके में बारिशें बहुत होती थी लेकिन इस दफा गर्मी भी जो है ना वो एंड हो रही है। बस जी पाकिस्तान हमारे इतना जबरदस्त है बस कदर नहीं कर रहे हम लोग सारी बात ये। अच्छा जनाब थोड़े थोड़े दुखी गाने जरा गजले बजले सुना दी जरा एक जरा इस तरह का भी हो जाए एक ट्रैक थोड़ा सा ये गाना आय हाय

हाय हाय क्या बात है जनाब, माजरत मैं पूरा गाना आपको नहीं सुना पाया लेकिन इतना काफी है। और जनाब आपका शो सुना, आपसे बात की, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील किया। थैंक यू, मोस्ट वेलकम हुमा जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें आप। और जिंदगी में ये सब चीजें चलती रहती हैं, बस हम सब ने फेस करना है। जनाब नेक्स्ट ट्रैक जो आज मैं पूरा नहीं सुना सका आपको, वो कुछ इस तरीके से था।

हमारे जनाब, क्या ही जबरदस्त ट्रैक ये वाला भी, नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरा सुनाएंगे आपको। अयाज भाई शो का जवाब नहीं, गुड ट्रैक। और रशीद खान बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट जनाब, और ये वाला भी ट्रैक बहुत जबरदस्त है।

0: म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ
1: हरिणी।
0: आपका और मेरा साथ है जनाब, एक बजे तक और एक बजे तक करेंगे खूब हल्ला ते गुल्ला। इस हल्ले गुल्ले में शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए जाइए जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। जो लोग इस वक्त कार ड्राइव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, बड़ी मेहरबानी होगी। ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी करेंगे तो भी मेहरबानी होगी। वैसे इस पर कोई अमल करता नहीं, ज्यादातर लोग अमल नहीं करते, लेकिन आप कर लेंगे तो मेहरबानी है भाई। कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं मैं और आप देते हैं उसका जवाब, मगर उससे पहले करता हूं आप लोगों को वार्म अप। और वार्म अप करने के लिए चलता है गाना, तो पहला गाना लुड्डी मारो भाई, लुड्डी लुड्डी एलो फड़ो।

भाई अंजलि को सालगिरह बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक। और हमारी दुआ है कि जिस तरह के अंजलि के बाबा जान जो हैं मोहनलाल ने उनको इतनी प्यारी प्यारी सी दुआएं दी हैं, और उस दुआ में एक दुआ मेरी भी शामिल कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमारी प्यारी सी अंजलि की नसीब बहुत अच्छे करे, उसको दुनिया की हजारों खुशियां मिल जाए, लाखों खुशियां मिल जाए, इतनी खुशियां मिल जाए कि ये समेट ना पाए। आमीन सुमा आमीन बोलिए सब। कादर बख्श बलोच सही, आज तो हमारा सारा सिंध इकट्ठा हो गया है। एने भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? सही, ओके टेक, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, आगे बढ़ते हैं सही। सलीम मेमन भाई भी आ गए। शोभी भाई आपको अगर आवाज आ रही है तो गुफरान साहब जरा आ जाएं तो उनको यहां भेज दीजिएगा, क्योंकि यहां पर एक मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर बाद में। हमारे गुफरान भाई यहां आए हुए हैं आज। अच्छा भाई सलाम सुने हो, मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गया, तो मैंने कब किया कहा कि तुम सब्जी लेने गए थे भाई डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास लोग दवाई लेने जाते हैं मेरे शहर, निहारी लेने थोड़ी जाते हो। कैसी बातें कर रहे हो यार, आगे मैंने पढ़ा नहीं, एक एक लाइन के साथ चर्चा करूंगा। डॉक्टर ने कहा कि खून की कमी है, ड्राई गोला ना बन जाना, पता चले कि लोगों के खून चूस रहे हो, वैसे तो तुम बातों से चूसते रहते हो, और अनार के खाएं। जब मैंने अनार को खोला तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें तो मुझसे भी ज्यादा खून की कमी है। कैसा लगा मजाक, कौन सा अनार ले आया था भाई? मलेरिया वाला अनार ले आया था क्या? या आंखों में से कलर चला गया है, लाल की जगह जो है तुम्हें सड़ा हुआ पीला नजर आ रहा है, क्या हो गया सलीम भाई? इकरा काजमी कह रही है सलाम नदीम भाई, बहुत दिनों के बाद सुन रही हूँ। क्यों भाई? बहुत प्रॉब्लम में हूँ, अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम को खत्म करा है, बहुत डिस्टर्ब रही हूँ, सबसे दुआओं की अपील है। इकरा आपके लिए बेहद दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात तमाम परेशानियों को खत्म फरमाए, और ये उसी वक्त खत्म होगी जब अल्लाह पे पूरा आपका यकीन होगा कि अल्लाह ये खत्म करेगा, यानी कि समझ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मजाक मजाक में बड़ी अच्छी बात कहती मैंने। नदीम जी, जी नदीम भाई, अब्बू नहीं रखा है फिर नाम, अब्बू ने कितनी मरतबा रखा था नाम? दोबारा मैसेज आ गया ना रीमा का, यार मेरे ख्याल में गाने की जानिब जाऊं, और एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं तमाम यंगस्टर्स बच्चों को डेडिकेट करता हूँ, एलो फड़ो।

0: This transmission is brought to you by
1: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
0: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: facebook.com/fm247365 fm247365
4: वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको, और जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर, और बढ़ते हैं जनाब संजू के मैसेजेस की जानिब। और इंसान को इंसान होने का मार्जिन जरूर दीजिए, अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें उसे जिंदा रखें। हाय अल्लाह जी, अगर कोई आपकी परवाह करता है तो कोशिश करें उसको इग्नोर ना करें। हाय अल्लाह, अगर कोई आपकी चाह करता है तो कोशिश करें बदले में कम ही मगर चाह दें। कौन सी वाली स्ट्रांग चाह, ये लाइट चाह, क्योंकि परवाह फिक्र चाह ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते। इस गिरगिट सी दुनिया में असल कम और नायाब बेकदर नायाब अच्छा इस गिरगिट सी दुनिया में असल कम और नायाब कम है, कदर करें यादें कभी भी मदावा नहीं होती। वाह वाह वाह, इतनी अच्छा इक्तिबास, वाह वाह वाह। ये मैसेज से जो नतीजा अखज होता है वो ये होता है कि आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो आपसे बहुत मोहब्बत करते होंगे, जो आपकी बहुत परवाह करते होंगे, मगर इंसान सिर्फ उसी के पीछे भागता है जिसको वो मोहब्बत करते हैं। यानी कि समझ रहे ना आप, मतलब आपको किसी मोहब्बत हो रही है वो टाइट सी, लेकिन कोई और भी है जो आपको आपको आपसे मोहब्बत करता है, आपकी परवाह करता है। यानी कि समझिए इस बात को, और हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इग्नोर मार रहे होते हैं, ज्यादातर इग्नोर मार रहे होते हैं। ये चीज आपको यकीन माने तब पता चलती है जब दिल पर चोट लगती है। तो ऐसे लोगों की कदर करें, और वाकई में हकीकत में ये लोग बहुत कम मिलते हैं, मुखलिस लोग, प्यार करने वाले लोग, परवाह करने वाले लोग। दुनिया है पूरा शो इसी तरह चले, खुशी खुशी किसकी नजर ना लगे। दुआ है ये पूरा शो इसी तरह चले, मेरी मेरे लिए दुआ कर रही हैं। वो क्या है, मैंने ये पूछा है यारी वो आप हैं मैं तो हूँ। अच्छा भाई, रुबाब को पंजाबी सॉन्ग पसंद है? बिल्कुल भाई, उन्होंने गाने सुने और उसके बाद फौरन मैसेज किए हैं। रुबाब बहुत खुशकिस्मत हैं, क्यू शीट उनकी पसंद की होती है शो में, चार चांद लग जाते। किसने कह दिया भाई, क्यू शीट हमारी बनी होती है, हमारी मेहनत पर पानी फेर रही है, वो तो अलग बात है, मैं क्यू शीट खुद बनाता हूँ। साथी आप लोगों की फरमाइशें आ जाती हैं तो मेरा दिल जो है वो फिर कहता है यार चलो भाड़ में डालो क्यू शीट को, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप लोगों की जो जितने भी हम मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर है, जैसे अभी मुजीब भाई आए हैं, हमारे अनवर पिताफी भाई है, हमारी प्यारी सी बहन नफीसा आई है, नफीसा मानो उन्होंने भी एक सिंधी गाने की फरमाइश की। तो बेतहाशा फरमाइशें आती हैं, तो आप सबकी फरमाइशें सर आंखों पर होती हैं और मैं सबकी पूरी कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मेरे प्यारे भाई के मिजाज कैसे हैं, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और तमाम तरीन हसीन समाधों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहना, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। और मैं क्या कहूं, ये प्यार जो होता है ना, अरे यार वैसे बहन भाइयों वाला, इतनी दूर रहकर आपको भाई का इतना ख्याल, अरे जो इस ये जो नदीम अख्तर भाई बैठा हुआ है ना यहाँ पर, इसको जो अशद जरूरत है ना वो है दुआओं की आपकी। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, सो नाइस ऑफ यू। हाय आप लोगों का प्यार मोहब्बत यार है ना, मैं बता नहीं सकता यार आपको। चले यार हम एक गाना जो है वो डेडिकेट करते हैं हमारी प्यारी सी बहन नौरीन को, तो नौरीन क्योंकि अब सुन रही हैं तो उनको ये अच्छा लगेगा गाना। एल्लो फड़ो, छोटा जिया गाना है।

0: वेलकम बैक हुसना दी सरकार। हमने अपने तारे इस बैंड को बोला है यार, हमारे बैंड जो है फैसलाबाद में नरेंद्र से आधे घंटे का शो मिस हो गया, तभी ठीक नहीं हॉस्पिटल गई थी। आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है मेरी प्यारी बहन, आपके लिए बेतहाशा दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन मैं नहीं, सब लोग जितने भी हैं सब लोग भाई बहुत सारी दुआएं करें हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ के लिए। और एक बात बताऊं नौरीन, टेंशन लेना छोड़ दो। वैसे तो माशाल्लाह से आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, हैं जी, लेकिन फिर भी भाई की सजेशन है। सलाम ब्रो, आपका शो लाजवाब होता है और जिंदगी से भरपूर होता है। हाय अल्लाह जी, रानी आ गई रानी। ये वही वाली रानी तो नहीं है जिसको सलाम भेजा था संजू ने? संजीदा चाची जान, पुप्पा फारूक महाराज, मेराज भाई। अरे मेराज भाई यार, मेराज भाई जो है ना हमारे, वो फोन कॉल्स पर बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे से लिसनर्स आते हैं जिनको मिस कर रहे हैं। मेराज भाई मैं आपको बहुत जो है भाई, मैं आपको बहुत याद करता हूँ इसी तरीके से। तो मेराज भाई और इकरा और रूसा, इमरान भाई, बहुत सारी दुआएं तमाम सुनने वालों के लिए। भाई रानी छा गई है तुम, सारे जितने भी हमारे शो के पुराने चावल हैं सब तुम्हें याद हैं। ओके टेक रानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। और भाई जान ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम सुनियो, मन मोनायो नोमान नॉर्मान नॉर्मान, भाई क्या लिखा हुआ है? मैं गुड लिसनर नहीं हूँ, बहुत शो मिस करता हूँ। अरे मेरे शहजादे नोमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, बात सिर्फ इतनी है कि जिंदगी जो है ना ये अल्टियां पलटियां खाती रहती है, तो इसके इसमें जो है अगर आप अपने किसी भी काम से जो जरूरी है उसकी वजह से शो मिस हो जाता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है भाई, काम बहुत जरूरी है, इंसान बस काम करता रहे, यानी कि समझ रहे। रीमा का मतलब है सफेद हिरनी। ओए होए होए होए रीमा, इतने तो तुम्हारे नाना मतलब ही दास देता है। सर में शदीद दर्द है आपका, आपको सुनकर गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। आपके तो कान है ना। नमन में मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मनाइएगा है जी। अच्छा और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जनाब। अबे यार आप लोगों की मोहब्बत है प्यार यार, ऐना है कि मैं तुम्हें दास नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, नफीसा बानों का नाम लिया। अब नफीसा मैंने आपका गाना नोट कर लिया है और पूरी कोशिश है कि आपका ट्रैक जो है वो चलाऊं, ना चले तो भाई को, क्योंकि हमारे गुफरान भाई गायब हुए हैं, वो आएंगे तो उसके बाद फिर मैं पक्का वादा करूंगा। नदीम भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, दो बच्चे हैं मेरे, हुरिया और सुभान, और मेरे अब्बू इसमें इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अदा फरमाए। रीमा सॉरी, हुरिया और सुभान का नाम तुमने क्यों रखा है? मतलब हुरिया और सुभान कितने प्यारे नाम है, लेकिन अब्बू के हवाले से मैं बता रहा हूँ, अब तो मैं इस पर मजाक कर ही नहीं सकता। वैसे मैं मजाहतन बोल रहा था ये, तो बिल्कुल बुरा नहीं मनाना मेरी बहन, तो जीती रहो मुस्कुराती रहो। हालांकि रीमा तुमने अपना नाम नहीं लिखा, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा मैसेज था। और अच्छा बाद में एक और मैसेज कर दिया, उसमें नाम भी लिख दिया। फिकर फ्री पैकेज लग गया था, रोज 18 रुपए बैलेंस से कट रहे थे, बैलेंस नहीं डाल रहा था, साहिबजादा साहब कह रहे थे। हाय चलो साहिबजादा, जब इंसान का नुकसान होता है ना तभी अकल आती है। मानूर कह रही हैं कि बाबू और अयूब आफरीदी भाई को, मुश्क को और सलीम को मेरी तरफ से पश्तो सा प्यारा सगा ने यार अड्डे जी खेट कर बिल्कुल खरेगा। अयूब आफरीदी भाई यार आप किधर चले गए हो यार, इतनी मसरूफियत माशाल्लाह से, आपके बारे में तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अयूब लाला किधर है यार, अयूब लाला किधर है यार, और आपने मुझे नहीं बताया आप कहाँ गए में, बस मैं कुटी हूँ आपसे। लाला को गाना डेडिकेट करूंगा, लाला की जानिब से भी गाना डेडिकेट करूंगा, लेकिन कुटी हूँ। और एक और मेरी प्यारी सी शहजादी बहना आ गई हैं, जरीन नूर, कह रही है सलाम। कैसे हैं वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को मेरी प्यारी सी बहना ने बहुत सलाम कहा। वालेकुम असलम, कहाँ गायब थी भाई तुम, रोटियां शोटियां पका रही थी, जरा बताना तो सही। अच्छा कह रही मुश्क को कमी पूरा करना आता है, मुश्क से राबता करें। मुश्क भाई हम आपसे राबता कायम कर रहे हैं, कहाँ गायब है। और अच्छा रीमा तुमने इतने सारे मैसेज कर दिए, मेरा बच्चा है मेरी प्यारी सी बहन, इतने बैलेंस अपना जाया नहीं करो, एक मैसेज तुम्हारा आया, तुमने एक ही मैसेज पांच दफा जो है ना मुझे किया। मेरी प्यारी सी बहन तो कुछ और भी लिख दिया करो, वो फॉरवर्ड हो गया बहुत दफा, वो मैंने पढ़ भी लिया। रीमा हुरिया और सुभान को मैं गाना भी डेडिकेट कर दूंगा। अच्छा भाई कंबर अली साहब फ्राम टंडो आदम से, सही आज तो मजा आ गया सही, आज तो हमारा पूरा सिंध इकट्ठा हो गया सही। और नदीम भाई शो इज बेस्ट, प्लीज प्ले आते फसलम सॉन्ग एंड डेडिकेट करने के लिए कहा भाई, बिल्कुल करेंगे। और एक आदमी ने चाइनीज लड़की से शादी कर ली, एक साल के बाद वो लड़की मर गई, वो आदमी बहुत रोया, उसका दोस्त आया और बोला यार चुप हो जा, चाइना का माल था बस इतना ही चल रहा था। सलीम मेमन, अबे ये चाइना के लोग जो हैं ये बहुत लंबी उम्र पाते हैं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ गो के चुटकुला अच्छा था, सलीम मेमन का था ये। अब भाई एक आखिरी मैसेज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको बल्कि एक आखिरी मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम फौरन जा रहे हैं ब्रेक की जाने।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी। This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको, मेरा नाम है नदीम अख्तर, प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन एस सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी सारी है। और एक मैसेज और पढ़ेंगे, उम्मीर रुबाब के आए हैं मैसेज और क्या किए हैं। उम्मीर रुबाब ज्यादा मत बोलो, मौला सलामत रखे और बाद नजरबाद से महफूज रखे, आपके सारे गम मुझे अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको कोई गम ना मिले उम्मीर रुबाब, इस तरह ना करे, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। और बेतहाशा दुआएं दी हैं उम्मीर रुबाब, हम भी आपको बहुत सारा दुआएं दिए हैं, और ये जितना दुआएं आपने लिखा है हमारा जानिब से भी आपके लिए, और हम आपके लिए गाना तो वैसे आपको सारे पसंद आ रहे हैं, कोई और गाना भी आपके नाम कर देंगे, यानी कि समझ रही है ना भाई। अभी हम जा रहे हैं एक ट्रैक की जानिब, सही सारा सिंध हमारे पास जमाए हैं भाई हमारे, कौन कौन है नाम मैं जरा देख लूं यार, अनवर पिताफी भाई तो खैर सही है ही, और उसके साथ साथ सही मोहनलाल हमारा सही, और अंजलि की क्योंकि बर्थडे है तो अंजलि को हम ये ट्रैक डेडिकेट कर रहे हैं मोहनलाल की जानिब से, हम सबकी जानिब से, और उसके साथ साथ जनाब जो है हमारे अनवर पिताफी भाई जो है दादू से सही, उनको भी डेडिकेट करते हैं सही, और कादिर बख्श बलोच भाई को भी डेडिकेट, और जितने भी मेरे सिंधी बहन भाई सही सुन रहे हैं उन सबको डेडिकेट करेंगे। और नफीसा बानो तुम्हारा गाना हम ढूंढ रहा है, वो मिल गया तो हम वो भी चलाएगा, फिलहाल ये वाला गाना पकड़ो।

0: वेलकम बैक सुनियो यही सुनो यही सुनो वाह वाह वाह सही क्या गाना लगाए और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आया होएगा और जनाब मैसेजेस तो आपके बेतहाशा आए हुए हैं और संजू का हास हो गई हो तुम आ जाओ फौरन उठ के या कुछ खाने पीने चली गई हो और नदीम भाई पुराना बीजीएम लाजवाब था का जवाब नहीं है भाई नया बीजीएम उनको पसंद नहीं आ रहा भाई साहबजादा साहब इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और नदीम भाई लाइट वालों को के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको नेक बना दे कि लाइट ना जाए शायद आपकी मान ले ये लोग रीमा कह रही है रीमा मेरी प्यारी सी बहन ये वो नस्ल है ही नहीं जितनी इनको बद्दुआएं पूरी पाकिस्तान से मिलती हैं इनका बैंड बज जाना चाहिए मगर क्या करें इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में असल में वजह मैं आपको एक बात बताता हूं इस हवाले से लाइट के हवाले से मैं अपने तमाम लिसनर्स को एक बात बताता हूं पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइट नहीं जाती उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि वो एग्जेम्प्टेड एरियाज कहलाते हैं एग्जेम्प्टेड एरियाज वो वाले एरियाज होते हैं जहां पर जिस इलाके से बिल पूरे इलाके का बिल जो है वो तकरीबन 90-95% तक बिल जो है वो उसकी अदायगी जो है वो टाइम पर हो रही हो जिस इलाके में कुंडा सिस्टम ना हो उन इलाकों में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती ना होने के बराबर होती है कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तो लाइट जाती है ज्यादातर लोड शेडिंग उन इलाकों में होती है जहां पर ये कुंडा सिस्टम होता है जहां पर बिजली चोरी हो रही होती है और जहां पर बिलों की अदायगी जो है उसमें हेर फेर हो रहा होता है तो वहां पर ज्यादा ये सिलसिलाकार होता है ठीक है ना ये मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूं जो केई वाले बताते हैं केई वाले यानी कराची इलेक्ट्रिक वाले मगर बात ये नहीं बात ये है कि जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उधर भी यही हाल है यकीन माने तो बस इनके लिए दुआ ये करना ये कि अल्लाह ताला वाकई इनको हिदायत अता फरमाए और उसके साथ साथ एक दुआ और भी है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी हिदायत अता फरमाए कि ऊट पटांग किस्म के काम करना छोड़ दें तो बाप बहुत खुशकिस्मत हैं क्यू शीट अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ बता भी चुका हूँ अल्लाह रहम करे आपको क्या गम है मासूम रुबाब आपके सारे गम ले रही हैं नहीं नहीं अल्लाह ताला उसको भी कोई गम ना दे कुछ हमें भी बता दे ओ जी एम ही किया मैं असल में नसीब होते हैं वो लोग जिनसे आप खुश नसीब होते हैं वो लोग ये परेशानियां शेयर करते हैं रबाब की जादुई शख्सियत है माशाल्लाह ये तो है रबाब बस अब जादू करना नहीं सीख लेना जादू शख्सियत है सिर्फ
1: मिजाक कर रहा था भाई मिजाक
0: और आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानेब नदीम भाई अच्छा ये तो हो गया था अरे ये क्या लिखा हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा नौरीन तौसीफ की परेशानी नहीं है उनकी तबीयत के हवाले से है रीमा अल्लाह ताला उन्होंने बेतहाशा नौरीन आपके लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए हुम्मा भी आ गई है हुम्मा हुम्मा कर भैया सलाम नदीम ओए होए अच्छा भाई हुमा की भांजी की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो शो नहीं सुन सकी थी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए इन्नल्लाह व इन्नलैहि राजिऊन आगे बढ़ते हैं जनाब आराम मिर्जा साहब आ गए मिर्जा वाह वाह बहुत खूब जबरदस्त क्या सॉन्ग लगाया है तुसी क्या कह रहे हैं नदीम भाई मिर्जा साहब को जो है ना गाने बड़े पसंद है मुझे शुजा साहब गुज्जर खान तो सुनते
1: रानी आ गई भाई हमारी जी मैं रानी हुसैन वही वाली हाय अल्लाह जी
0: जरीन नूर मेरी बहन कह रही है लाइट नहीं है इसीलिए देर से सुनना कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी बहन अरे शहजादी बात दरअसल ये है कि अभी रीमा के तरफ भी यही हाल है लेकिन हाँ हम लोग आपके साथ हैं ना यानी कि समझ रही हैं आप इसीलिए तो आपका वक्त ऐसे गुजर जाता है लाइट का लाइट जब नहीं आ रही होती तो आप मेरा शो सुन रही होती FM 100 सुन रही होती उससे ये फायदा होता है यानी कि समझ रही है ना कि टाइम निकल जाता है भाई। आज की रात 14 के है। अनवर पिताफी साहब को सलाम। 14वीं की रात है आज। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कब से आपका इंतजार कर रहे थे गुफरान भाई। यार हद होती है, हद होती है यार, हद होती है, ये हद होती है भाई। ये बहुत मसला हो रहा है भाई। हाँ उस्मान भाई नहीं है। चलिए जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अभी आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि 2 मिनट का ट्रैक निकल आया ना। हाय, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त है। वो मैंने जो है वो 12 बजे के बाद कुछ ट्रैक्स ऐसे स्पेशली रखे हुए हैं आपको सुनाने के लिए। ये वो 12 बजे के बाद सुनाएंगे। अरे नहीं सुना सकते। अभी चले आपके मैसेजेस ही पढ़ लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि ब्रेक के लिए चंद मिनट रह गए हैं, 1 मिनट और 10 सेकंड। नौरीन प्यारी सी बहन क्या कह रही है, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया और सॉन्ग का भी बहुत शुक्रिया। समझ कुछ नहीं है। अरे वो क्या नाम है उसका, अबरारुल हक का बड़ा जबरदस्त गाना है। हुसना दी सरकार तो अनुवासी की सरकार बना लिया। अच्छा जी, जोया शहजादी कह रही है अस्सलामुअलैकुम अख्तर भाई, क्या हाल है। जोया शहजादी नहीं है भाई, ये हमारी प्यारी सी बहन हलीमा पठान है। हलीमा पठान क्या कह रही है, कह रही है मैं अक्सर सोचती थी कि ये लोग अचानक खामोश कैसे हो जाते हैं, अचानक क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं लोग। आज आपने मिसाल में खुद ही हूं, ना किसी से बात करती हूं, ना ही कोई महफिल अच्छी लगती है।
1: अरे काशी भैया कैसे हैं आप। काशी भाई आ गए।
0: काशी भाई अजीब सा सीन चल रहा है, मैंने अभी बंद किया भाई, थोड़ी देर में चला लेंगे यार। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा भाई आज मेरा मूड नहीं हो रहा कोई ऐसी चर्चा करने के लिए जिससे सबका दिल दुखे। 12 बजे के बाद या 12:30 बजे के बाद शायद मैं हलीमा पठान मेरी प्यारी सी बहन आपकी इस बात का जवाब दूंगा। यानी कि समझ रही है ना। और आगे बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है हमारी प्यारी सी बहना
1: फरीदा बुरान उद्दीन आ गई।
0: कह रही है अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी। ओके ठीक, मेरे इलाके में कहती है लाइट बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा जी ये अच्छी बात है ना। अच्छा अभी पी जाएंगे जनाब एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद मुजीब जो है ना हमारे मुजीब साहब के साहबजादे उनकी फरमाइश को पूरा करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक।
2: FM 100's टाइम चेक, इट्स 12 midnight। This transmission was brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program was brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अच्छा भाई, अभी हम मुनीब और मुजीब साहब के साहबजादे मुनीब की रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि मैंने भी बड़े मजे लेकर सुनना है गाना, मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन अभी मैं आपको एक और ट्रैक की जानिब लेकर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आ गया। इकरा सुन रही है आज, तो इकरा तुम्हारे लिए मेरी प्यारी सी बहन, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर और हमने फरीदा बुरहानुद्दीन का मैसेज पढ़ा. अल्लाह रहम करे. अच्छा ये अल्लाह रहम करे आपको क्या काम. संजू का ये मैसेज हमने पढ़ लिया था. फरहीन शहजादी कह रही है अस्सलामुअलैकुम क्या हाल चाल है आपके सुनियो. मैं आ गई मेरी प्यारी सी बहन है. बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा. जीती रहो. कहाँ गायब थी तुम. हैं जी ते हैं जी. नौमान भाई कह रहे हैं कि मुझे सॉन्ग डेडिकेट नहीं किया करना. बिल्कुल नहीं करूंगा. मतलब दो गाने चलेंगे उसके बाद तो बिल्कुल नहीं करूंगा. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. अच्छा जी शायद इसी वजह से कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से तवज्जो से नहीं सुन सकी मेरी प्यारी सी बहन. अभी दो तीन गाने और बहुत अच्छे चलाने हैं मैंने 12:30 बजे के बाद. ये फरमाइशें वगैरह सारी पूरी हो जाए फिर उसके बाद आपको गाने एक और डेडिकेट करूंगा. आपको करूंगा संजू को करूंगा रुबाब को करूंगा. यानी कि समझ रहे ना. और हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं डेडिकेट करूंगा. नालो नाल नालो नाल. अच्छा जनाब अरे आप लोगों की मोहब्बत है भाई मेरा गला खाशक हो जाता है.

शोभी भाई को, शोभी भाई आपको एक गाना डेडिकेट करता हूँ, जबरदस्त सा। अब ये नया होगा लेकिन आपको शायद पसंद आए, लेकिन आएगा पसंद मुझे पता है। बस शोभी भाई भी भाई सुन रहे हैं, यानी कि ये समझ रहे हैं ना। और साहिबजादा का मैसेज हो गया था, रीमा का मैसेज हो गया था, एंड अनवर भाई का भी हो गया था, अनवर पिताफी भाई का। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल है, तबीयत नासाज थी 15 दिन से, ओए होए 15 दिन के बाद सुन रहा हूँ, आई एम सॉरी। अबे भाई सॉरी नहीं करते, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अभी तबीयत ठीक नहीं, मैंने सोचा हाजिरी लगवा लूं। सर क्या बात है इफ्तिखार भाई, जीते रहो, मुस्कुराते रहो, शाद रहो, आबाद रहो, खुश रहा करो यार, और इंशाल्लाह ताला तबीयत बिल्कुल ओके ठीक हो जाएगी। ये मेरे शो में मैं आपको 3 टाइम की दवाई दूंगा, वो 3 टाइम की दवाई आपने जरूर खानी है। अब जाहिर है रात हो रही है तो सिर्फ रात की डोज होगी, उसके बाद जो है बाकी 2 डोज सुबह की होंगी। वैसे इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा, यकीन मानिएगा, आप उसको इस्तेमाल करके देखेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैं नाम लिख लूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, दवाई देना इफ्तिखार इफ्ती भाई हैं जी, ते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं जनाब, अनीस साहब आए हैं, सलाम की बात कर रहे हैं। नदीम साहब कैसे हैं आप, आपको बहुत सारी दुआएं, हम आप दिल की बातें आपकी, हम अपने दिल की बातें आप के जरिए से शेयर कर सकते हैं पूरे सिटी में, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सिंध पुलिस का जिनका डिफरेंट यूनिट अपनी अच्छी ड्यूटी, डिफरेंट यूनिट अपनी अच्छी ड्यूटी दी, जिससे हमने देखा SSU SP तमाम टीम जो रोड पर गर्मी अपनी ड्यूटी दे रही थी, हमने उनके हक में दुआ करते हैं कि और शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो के काम कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। अच्छा भाई, इस हवाले से अनीस साहब का मैंने मैसेज जो है वो बावाज़े बुलंद नहीं पड़ा, समझने की कोशिश कर रहा था। और देखिए इस हवाले से अनीस भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि सैल्यूट है नो डाउट हमारे सिंध पुलिस को, और सिंध पुलिस ने स्पेशली मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक जिस तरीके से अपने फराइज अंजाम दिए, उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और जिसमें SSP साहब, SP साहब नो डाउट, और उसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हमारे पाकिस्तान के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को, खसूसी तौर पर जो हालिया एक वाकया हुआ, शायद आप लोगों को नहीं पता, शायद पता भी हो, दहशतगर्दों ने हमला किया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और काफी दहशतगर्द मारे भी गए और उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए थे, और एक दहशतगर्द जो है वो पकड़ा भी गया। और इस पर जो है मतलब बेइंतहा जो है दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो कि हमारे शहर की, हमारे मुल्क की, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। अनीस भाई आपका मैसेज बड़ा खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, मैं अपने गले को थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूं और आप लोगों को लेकर जा रहा हूं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक जो है मैं पूरा नाम जरा पढ़ लूं, मुजीब भाई जो हैं हमारे, उनके साहबजादे ने एक फरमाइश की थी उनके लिए, उन्होंने बोला था कि स्पेशली गाना चलाइएगा। मुजीबुर रहमान मरफानी साहब और उनके साहबजादे जो हैं वो हैं जनाब, अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, मुजीबुर रहमान का तो सिंधी सही गाना था, एक और साहब थे यार, उनका नाम क्या था, हाँ यूनस साहब ने एक फरमाइश की थी, तो यूनस साहब आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। ये मैंने गाना पहले इस वजह से नहीं चलाया कि मैं कुछ काम थे मुझे, और जिसकी वजह से मैंने ये गाना नहीं चलाया, मैं ये खुद भी सुनना चाह रहा हूं भरपूर तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है यूनस साहब आपके लिए। जो इंग्लिश सॉन्ग लवर्स हैं उन सबको भी डेडिकेट करूंगा ये मैं अपनी जानिब से, जिसमें मेरी प्यारी सी बहन अरूसा भी है, मिसेस फारूक भी है। ब्यूटीफुल ट्रैक।

वेलकम बैक, डोंट ब्रेक माय हार्ट। क्या बात है गुफरान भाई, आज तो आप बहुत मसरूफ हैं। डोंट ब्रेक माय हार्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग UB40 एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड इसके साथ ही साथ हलीमा मेरी प्यारी सी बहन का मैसेज पढ़ते हैं, क्या कहती हैं, मैं जो भेज दिया, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है।

भी लिया करें ना रीमा, तुम्हारा नाम कितनी मृतबल है, आज तो तुम्हारा नाम इतना लिया, तुम अपने नाम से ना एक क्रीम निकालो रंग गोरा करने वाली, बहुत मशहूर होगी। और रेहान जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, और शो भी सुन रहे हैं। रेहान थैंक यू यार, ये शहजादा भी अच्छा है यार, इतना ही मैसेज करता है यार, उससे ज्यादा नहीं। नदीम भाई, बत्ती नहीं क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर लेटा हुआ हूँ। अभी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर क्यों लेट गया भाई, ये साहब ज्यादा साहब है हमारे। और अब एक ट्रैक की जानिब जाना है जनाब मैंने, और मैं जा रहा हूं कि अब आप लोगों की फरमाइशें भी साथ ही साथ सारी पूरी हो जाएं। और ये एक ऐसी फरमाइश है जो कि हम दो दफा चलाऊं, कह रहे दो दफा फरमाइश चलाओ। अच्छा भाई ठीक है। अच्छा भाई ये फरमाइश जो है स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ, आप सुनिएगा। और शोभी साहब, शोभी भाई अभी सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं शोभी भाई, जरा सुनिएगा, ये आपको स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूं गाना, तो शोभी भाई के लिए भी ये गाना जनाब, और उम्मीद करता हूं आप सबको भी पसंद आएगा। एल्लो फड़ो।

0: वेलकम बैक, सुने उनको भी हमसे मोहब्बत हो ये जरूरी तो नहीं। और आखिरकार आ गया है हमारा शहजादा युवा प्रेदे भाई, कहने जिगर जीबीएन को चौसा आम मुबारक। यार अयूब लाला, आप बात ऐसी करते हैं कि मैं कुछ, मुझे काबिल नहीं छोड़ दे कि मैं कुछ कहूँ। और कह रहे जाने जिगर ये हबीबी है आपको महानूर सबागुल मुश्क गुफरान को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। गुफरान भाई वालेकुम सलाम, गए आवाज आएगी आपकी।
1: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जबरदस्त भाई, चौसा आम, चौसा आम ही बस उसको भेजना। अच्छा भाई, और ये अयुब भाई का मैसेज हुआ, उम्मे रुबाब संजू एंड उम्मे रुबाब क्या कहे हैं आप, जादुई मैजिक कहां और कहां, मेरा ख्याल संजू मालूम सो गए हैं, संजू सोए नहीं हुए हैं। हाँ में जादुई मैजिक है वैसे तो। वैसे अयुब लाला आपके मैसेज ने जो है ना मेरे में एनर्जी लेवल बढ़ा दिया है, चौसे आम की जो बात सुनी है ना मैंने, हकीकत बताता है आपको यार, यकीन मानो। रानी कहती है पिच पर क्रिकेट तो हॉट, तो आवाम पिच पर जाकर सो गई है। पिच वाकई बात होती है, तपिश होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी हुसैन का शहजादा अब्दुल वासे हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विक्ट्री एंथम चला दें। कौन सा? और शोभी भाई को भी सलाम गाया भाई, शहजादा अब्दुल वासे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी बहन रानी के साथ आ गए हैं। मिर्जा साहब कहने ने उस्ताद शोभी साहब को आपने जो सॉन्ग डेडिकेट किया, क्या कमाल सॉन्ग, लाजवाब यार, मेलोडी ऐसे जबरदस्त कंपोजिशन, शुक्रिया भाईजन। और मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ को भी मैंने डेडिकेट किया, हाँ पसंद भी आया मेरी बहना को, थैंक यू। और समी शेख आ गए हैं भाईजन, समी साहब आ गए, मसरूफ थे अभी क्या डेढ़ घंटे से, अभी डेढ़ घंटे के बाद शो में आए तकरीबन एक घंटा बीस मिनट के बाद, और ये मसरूफ थे कहीं, आप बताएं कहाँ होंगे मसरूफ।
1: वो लोरी सुना रहे थे ना तो।
0: अच्छा अच्छा, लोरी सुना रहे थे। निंदिया आ जा री आ जा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सलाम और गुफरान भाई को और तमाम लिसनर्स को। अब भाई इन्होंने गाने की फरमाइश कर दी है, पूरी करूं या ना करूं, इन पर तो जो है जुर्माना होना चाहिए ना, इतनी लेट क्यों आए, लोरी देने में इतना टाइम क्यों दिया इन्होंने।
1: पिछला जो जुर्माना वो भी तक इन्होंने,
0: हाँ पिछला जुर्माना भी नहीं अभी पूरा हुआ, लेकिन ये अभी लोरी, इतनी लंबी लोरी डेढ़ घंटे की होने वाली बेगम को अगर लोरी दे रहे हो तो बेटे अभी तो तू लोरी दे के सुला रहा है ना, इंशाल्लाह शादी के बाद जो है तेरी सारी नींदें हराम होगी। वो कह रहा अम्मी को लेकर गया हुआ था दवाई लेने के लिए भाई। एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? एक्सप्लेन क्यों करें, हमने पूछा कि दवाई लेने गए थे। उसमें से दो गोलियां खुद भी खा लेना। सारे जुर्माने के साथ अदा करूंगा गुफरान भाई, ये पता कि ये शादी में बुला लेगा, बोलेगा सारे जुर्माने खत्म। वैसे उन्हें भी सुला दिया है बेटे, उन्होंने तूने सुलाया नहीं है, उनको नींद आ रही थी, उन्होंने बोला था बस कट लो अब। वरना तुम कहाँ जान छोड़ते हो,
1: अम्मी वाला तो वहाँ है।
0: हाँ वो तो मान गया। समी देखो तुम्हारे आने से और अयुब लाला के आने से रौनकें आ गई, दुबाला हो गई, रौनकें तो थी मगर दो बाला दुबला हो गई। अयुब लाला कह रहे हैं अल्लाह करे माहीन और निगत को ढेर सारे चौसा आम नसीब हो, उनको ठेला लगवा दें आप, ढेर सारे होंगे। और अयुब लाला आप तो ठेला लगवा कर दे सकते हैं, माहीन को और निगत को एक ठेला लगवा दें और आम भी ऐसे बिकेंगे वो भी चौसा। अच्छा वही बाबा आप डॉक्टर बनेगा? भाई मैं डॉक्टर हूँ। आपने इलाज करवाना
1: तो
0: आज
1: बाबा मरीज तो
0: बनो। आप मरीज बनो पहले। अच्छा आप डॉक्टर बन गया है तो हमको भी कोई अरे हाँ इफ्तिखार भाई को मैंने बतानी थी ना दवाइयाँ, ऐसा दवाई बताओ। बाबा जब से ईद पर गोश्त खाया है तबीयत में एक हलचल सी मची हुई है। सलीम मेमन भाई इसका इलाज है। यार सलीम मेमन भाई क्या अच्छा इसका मैं आपको इशारा दे देता हूँ, इसका इलाज भी है और दवा भी आपके पास है। आप यकीन माने सारी हलचल दूर हो जाएगी। इतना गोश्त वैसे क्यों खाया यार इसने? सारा डीप फ्रीजर खत्म कर दिया, बारबेक्यू पे भी नहीं बुलाया हमें इसने। खैर कोई बात नहीं। कादिर बख्श भाई कहता है एने भाई बिलावल भाई और संजू जी को सॉन्ग डेडिकेट कर दे। संजू के लिए तो गाना मैंने एक रखा हुआ है, आपकी जानिब से अलग कर देंगे, अपनी जानिब से भी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? सबको मेरा सलाम। सबा गुल आ गई मेरी प्यारी सी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कह रहे हैं कि उनके सर में दर्द था, समी साहब का मैसेज पढ़ रहा हूँ, इस वजह से वो सोने चली गई। तो भाई उन्होंने कटाया ना आपको, बात तो यही है ना।
1: असल बात तो ये आई है,
0: मतलब ये इतना बोलता है, इतनी बातें करता है, बेचारी के सर में दर्द हो गया मेरी प्यारी सी मासूम सी बहन के। आप मुझे टाइम थोड़ा कम देते हैं नदीम भाई, ये कितनी देर से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मैसेज आया है और इसके बारे में चर्चा हो रही है और उसके बावजूद अभी इसको और कितना टाइम चाहिए? ये सारा टाइम तो उधर दे देता है, दवाइयों के। शोभी भाई को सलाम। शोभी भाई वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। शोभी भाई इससे पहले भी आया था आपके लिए मैसेज, बल्कि आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। इतना स्लो सॉन्ग था, नींद आ गई बेटे। ये गाना तुम्हें इस वजह से सुनाया है कि जब भी भाभी होने वाली भाभी के सर में दर्द हो उनको ये वाला सुना दिया करो, उनको नींद आ जाएगी। नहीं उनको भी हम सभी कह रहे हैं ना, अभी सभी की मैसेज पढ़ रहा
1: हूँ।
0: हाँ इसने दवाई सही नहीं दी, गाने में दम था। कह रहे हैं कि मैं उनके लिए दवाई खुद बनाऊंगा, समी भाई कह रहे हैं। बेटे उसको उसके लिए तुम्हें दवाई बनाने की जरूरत नहीं है, यकीन मानो तमाम बीमारियां तुम्हें ट्रांसफर हो जाएंगी। तुम फिर बोल रहे हो गया मेरा सर गया।
1: जितनी दवाइयां बनानी है बना ले, बाद में तो आप नहीं बनना।
0: हाँ वैसे एक बात यार मेरे जहन में आ रही है गुफरान भाई, शादी से पहले जब लड़की की शादी करीब होती है तो बे इंतहा मजाक हो रहा होता है, हंसी मजाक, दो सहबाब भी कर रहे होते हैं, रिश्तेदार भी मजाक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सबको पता होता है कि बाद में ये भी हमारे जैसे ही हो जाएगा। ये आप जो जो बता रहे हैं ना समी भाई, लग पता जाएगा आपको। अच्छा भाई अब तो गाने बहुत सारे मैंने चलाने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं हमारे प्यारे से अयूब लाला के लिए गाना पहले चला दूं, और ये मानूर मेरी प्यारी सी बहना ने भी डेडिकेशन के लिए कहा था कि पख्तो गाना कोई चलाओ यार, तो हम इंतजार कर रहा था अयूब लाला का कि अयूब लाला आएगा तो पख्तो गाना चलाएगा, तो आज जो है पख्तो गाना चला रहा है भाई। तो अयूब लाला आपको दो ठेले लेने पड़ेंगे आम के, एक भी नहीं बल्कि तीन लेने पड़ेंगे ना, एक निगत के लिए, एक माहिन के लिए और एक जीबीएन के लिए, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जी भर कर जो है वो आम तकसीम किए जाए। तो खैर जी आपके लिए एक बेहतरीन किस्म का गाना जो है वो पेश खिदमत है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। اور ہمارے پیارے سے ایوب لالا کی جانب سے یہ ٹریک جو ہے ڈیڈیکیٹ کریں گے جی بی این کو، ماہین کو اور نگت کو، اور مانور کی جانب سے بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے. یہ لو پکڑو بھائی جان.

वेलकम बैक कहेंगे सोनियो। और जनाब उम्मीद करता हूं कि ट्रैक पसंद आया होगा सबको, हमारे जितने भी पख्तून बहन भाई सुन रहे हैं उन सबको पसंद आया होगा। और आपके चंद मैसेजेस फौरन से बेशतर जो है वो शामिल करें। अरे बेतहाशा मैसेजेस ऐसे हैं जो कि स्किप भी हुए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं जनाब। नदीम भाई आज के बाद मैं सिर्फ आपका शो सुनूंगा, मैसेजेस नहीं करूंगा। आज तक के लिए कोई बात अगर नागवार गुजरी हो तो आप सब से सॉरी। इकरार काजमी साहब कह रहे हैं, क्यों भाई क्या हो गया इकरार भाई? आपके मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस से जान पड़ती है शो में। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? आपको मेरा सलाम और लाला को भी सलाम। सबा गुल कह रही हैं और उनका दोबारा मैसेज आया है, कह रही हैं आपने पहले पूरा नहीं पढ़ा था। सबा भी मैंने वड़ी बाबा पूजा पढ़ दिया है। और हमारे लाला कह रहे हैं कि भाई शोभी भाई को ढेर सारी दुआएं और सलाम। अयुब लाला आपका सलाम शोभी भाई तक पहुंच गया और शोभी भाई सबका जवाब दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि समी भाई को एक मशवरा है कि वो शादी के 3 महीने के बाद मूंगफली का ठेला लगा लें। और उसके बाद सॉन्ग के लिए उन्होंने थैंक यू कहा है। और समी बिल्कुल बता देंगे आपको, डोंट वरी सही। और आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा जी, एक गाने की फरमाइश की है हुमा ने हुमा, मैंने बहुत देर से देखा, माजरात। और हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन साहब ने भी फरमाइश की है। और हलीमा मेरी प्यारी बहना, ज्यादा दुखी मत हो, गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से। इस्लामाबाद से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ हमारे प्यारे से हमीद गुल साहब का मैसेज आया और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहे, लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और गुल साहब का एक तोहफा, बेवफाओं से वफा करते रहे शुक्रिया, ये शुक्रिया सबका अदा करते रहे। बेवफाओं से वफा करते रहे शुक्रिया सबका अदा करते रहे। वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। मिर्जा साहब कह रहे हैं संजू सोई वोई नहीं हुई हैं। वैसे कह रहे हैं कि कैसा लगेगा जब लड़कियां ठेले पर जो है वो आम बेच रही हूं मेकअप के साथ। भाईजन वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे सारे आम बिक जाएंगे, वो भी लंगड़ा आम। भाई यहाँ चौसे आम की बात हो रही है। इस सॉन्ग के बाद अयुब लाला के ठेले पर आवाज आएगी, रो रो राजा आम लो ताजा। रो रो कदा कदा मुना लैला। अच्छा जनाब, नौमान भाई क्या कह रहे हैं? बिजली चोरी करवाते भी तो केई वाले ही हैं। अरे भाई क्या कहें यार, वो आवाली बात की काली भेड़े हर जगह मौजूद है। कह रहे हैं गुफरान भाई को माइक लगाए, गुफरान भाई जा चुके हैं। और अब जनाब मैं एक ट्रैक की जानिब जा रहा हूं। ये ट्रैक जी मुझे बड़ा पसंद है। ये हम किन की जानिब से? जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करेंगे जनाब संजू को। जे का ट्रैक है जनाब, आई होप कि आपने पहले शायद सुना हो, लेकिन नहीं सुना तो आपको बहुत पसंद आएगा।

Welcome back, Angie. Beautiful track and I hope you like it. अच्छा अब क्योंकि वक्त भी बड़ा महदूद सा रह गया, इफ्तिखार भाई सुन रहे होंगे, उनको मैंने कहा था कि मैं तीन टाइम की दवाई बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रात का खुराक ये है, शीशे के सामने जाइए और जाने के बाद मुस्कुराइए, अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए, जरूर देखिएगा। इसी तरह सुबह दोपहर शाम इंशाल्लाह ताला आपको अफाका मिलेगा। ये हकीकत बता रहा हूं आपको, आप जरा ये ट्राई कीजिएगा। अच्छा भाई, बेदर्द जमाना क्या जाने क्या दर्द की लज्जत होती है, दिल दे के हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती है। वाह वाह रीमा, जबरदस्त ट्रैक। और अभी जो है ना, वो जिस तरह का मैं हल्ला गुल्ला कर रहा था ना, उससे थोड़ा सा इज्तनाब बरत रहा हूं, वक्त भी बड़ा महदूद सा रह गया है जनाब, और आप लोगों की फरमाइशें भी हैं, तो हमारे समी साहब की जानिब से उनकी होने वाली दुल्हन को ये ट्रैक हम डेडिकेट करते हैं। समी भाई आपकी जानिब से एलो फड़ो।

beautiful track, and I hope you like it. बस कोशिश यही है, ये जो माहौल बन रहा है वो बना रहा है। हमारे अनवर पिताफी भाई कह रहे हैं कि अजमल खान शोभी भाई को हमारी जानिब से सलाम। शोभी भाई वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं। शोभी भाई का शो अभी आप सुनेंगे फौरन ही, कुछ ही मिनट्स के बाद। तो अनवर पिताफी भाई आप बत तैयार हैं। अनीस कह रहे हैं नदीम भाई आपसे दूसरी बार फरमाइश की है पर आप पूरी नहीं कर रहे, वैसे भी आपकी बातों के आगे हमें सॉन्ग अच्छे नहीं लगते। आप हमारा दिल करता है आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, अब जल्दी से फरमाइश पूरी कर दीजिएगा। आई सो स्वीट अनीस भाई, आप यकीन मानेंगे उसमें मुझे फरमाइश तो ऐसी नहीं लगी कोई। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि हमारी पाकिस्तान सिंध पुलिस को और हमने रेंजर्स को जो है खैराज तहसीन पेश किया, लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। गुल साहब कहते हैं रो रो कैदा कदम मुना लैला राशा दलता ओरा आमूना लैला, राशा दलता ओरा आमूना लैला। अच्छा ये गाना है, आपने शायद फरमाइश करना चाह रहे थे। समी भाई ने कहा है बड़ी मेहरबानी जनाब, ये तंजिया मेहरबानी क्या बात है, खैर आप ये कह सकते हैं। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे भाई मैं अपनी जानिब से कर रहा हूँ ये ट्रैक संजू आपके लिए। बताइएगा कैसा लगा आपको गाना। हेलो फड़ो

Welcome back. Beautiful track, mellow track, and I hope you like it. जैसे जैसे रात बढ़ रही है, आप लोगों के मूड भी चेंज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे शो में ट्रैक चला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और जनाब नदीम भाई, ये गलत बात है कि आपने मुझे कोई सॉन्ग डेडिकेट नहीं किया। अरे जनाब, लास्ट ट्रैक जो है, छोटे भाई शयान की तरफ से सलाम। अच्छा भाई, शयान आपकी तवस्सु से मुझे याद भी आ गया कि हमारे नौमान साहब बल्दिया वाले जो हैं, लास्ट ट्रैक जो है मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा, शयान को भी डेडिकेट करूंगा। हैं जी, थे हैं जी। और अनीस साहब को भी डेडिकेट करूंगा। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो सुनते रहते हैं प्यार में, मोहब्बत में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जना, इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस बीच में कुछ ऐसे आए थे दर्द से भरे हुए, उन पर मैंने चर्चा नहीं की। एक टेम्पो चल रहा था, मैं चाह रहा था वो टेम्पो चलता रहे। अब क्योंकि इख्तितामी कलमात आपकी समातों तक पहुंचाने हैं, तो सोचा कि कुछ इस हवाले से कह दिया जाए। जिंदगी जो है वो इंसान की बड़ी मुख्तसर है, यकीन मानिए, तो जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना सीखिए। हम जिंदगी को जिंदगी की तरह नहीं जीते, हम बस अफरा तफरी में लगे हुए हैं, ये काम वो काम, ये हासिल हो जाए वो हासिल हो जाए, इसको हमने खो दिया, इसको हमने पा लिया, यही सिलसिला चल रहा है। इन तमाम चीजों में क्या है, खो रहे हैं आप, पा रहे हैं आप खुद क्या हैं? अपने लिए जीना सीखिए, आप खुद जीना शुरू कर देंगे ना, ये सांसें जो चल रही हैं ये जीना नहीं है, जिंदगी जिए। और जिंदगी जब आपने जीना शुरू कर दी, तो यकीन मानिए कि जिंदगी के सामने आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, वो आप ऐसे अबूर करेंगे कि जैसे इंसान बहुत ही सुकून के साथ पानी पी लेता है। ये बात मैं हलीमा पठान, मेरी प्यारी सी बहन जो है, मैं उसको भी कहना चाहूंगा, मानूर को भी कहना चाहूंगा, इकरार को भी कहना चाहूंगा। इकरार, आपका मैसेज आया, आपने कहा जी कि मैं अब आप खामोशी से जरूर सुनता रहूंगा। तो खैर, जिंदगी को जिंदगी की तरह जिए, इसके साथ ही मैं चाहूंगा आप सबसे इजाजत। और नौमान बल्दिया वाले मेरे शहजादे, आपको ट्रैक डेडिकेट हो रहा है। हाँ जी, ये नहीं बोलिएगा ये हुआ नहीं। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, और उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और ये भी फर्स्ट टाइम चल रहा है मेरे शो में। समाअत फरमाइए, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।

जी जनाब, ये आवाज थी इनाथन भट्टी साहब की। अब वक्त 2:12 बल्कि 13 मिनट हो चुके हैं और हमें ज्वाइन किया हुमा ने, और हुमा कहती हैं सलाम शोभी जी। वालेकुम सलाम, आपको वेलकम कहते हैं हुमा। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से हैं। और अब शामिल करते हैं जनाब भट्टी साहब की आवाज के बाद, और फिर शाज़े खुश की आवाज आपने सुनी, और फिर आवाज आपने सुनी अताउल्लाह खान निसा खिलजी की। और अब शामिल करते हैं हम अरशद महमूद की।

ये माजी की फिल्म थी इज्जत, उसका ये ट्रैक था और आवाज थी उस वक्त की गुलकारा थी समर इकबाल, उनकी आवाज थी। और समर इकबाल ने इतने ज्यादा गाने नहीं गाए, मगर कुछ फिल्मों में उन्होंने गाने गए, कुछ प्राइवेट गाने गए, मगर ज्यादा इतने ज्यादा वो म्यूजिक में ज्यादा इतना नाम उनका हिट नहीं हो सका। मगर फिर भी जो चंद गाने गए बड़े कामयाब गाने हैं, बड़े मशहूर हैं। और अब आती हैं हम एक बार फिर एक और दूसरे म्यूजिक की जानी।

जैसा कोई दूसरा नहीं। मुझे देखते देखते रात हो जाती थी, अब जो मुड़ के देखता हूं तो साहिल पे तेरे पैर के निशान भी नहीं। मेरी दिल की धड़कन में

चाहत से चाहत को चाहता हूँ, मेरे इश्क की इंतहा को मुड़ के देख हर कदम दिखा।

तो कहती थी कि मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं। मुझे देखते देखते रात हो जाती थी। अब जो मुड़ के देखता हूं तो साहिल पे तेरे पैर के निशान भी नहीं। मेरी दिल की धड़कन में

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।